0: है लाइका गोल्ड।
1: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
2: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
3: साउथहॉल ट्रेवल at all protected.
4: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
5: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
4: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
5: And you didn't pay those massive roaming charges?
4: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
6: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
7: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।

पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भुआई है। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्मे जे बुझे ताहों मैं कह ना कोए। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाईयां चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर। कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाई खाए। हुक्मी हुक्म चलाए राव, नानक विकसै वे परवाह। साचा साहेब साच ना।

मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना।

सुनिए हाथ वै सगा नानक भक्तां सदा विगास सुनिए दुख पाप का नास मन्ने की गत कही ना जाए जे को कहे पिछ

मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की शुद्ध मन्ने मोह चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहिब नानक रहन जाई।

रात जुग जुग एको वेश उगत ज्ञान दया भंडारण घट घट बाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध।

अनाहत जुग जुग एक ओवेश आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एक आवार कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनात जुग जुग एक ओवेश एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख लख।

ना जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नानक गया जापै जाए धर्म

0: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
1: The buy is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danu Properties Dubai has something for everyone.
2: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
3: Dubai is the place.
2: 11, 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
3: Danu 11, 11. Danu Properties.
4: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
5: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं जिंदगी भर याद रह जाती हैं और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लाइव इन कॉन्सर्ट Sunday the 6th of September at the Mesha Lohana Center, London. Apni seats abhi book kijiye. For more information, call Ashwin on 07956-278-228. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: Leica Gold. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par. DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Leica Gold. Aur online suno LeicaGold.com pe.
7: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Maika Gold.
1: Us kids are mesmerised by the mundane, entranced by the everyday. Where grown-ups see a snail, we see a slippery-shelled beast from the undergrowth. But around 1 in 5 young children have a sight condition that can get in the way of all that wonder. The good news is, if these are found early, they can be managed or corrected. So book your child a free eye test at Specsavers today. Find out more at specsavers.co.uk/kidstests.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
3: Visit TravelHubWorld.com.
4: Dad!
5: What's wrong, beta?
4: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
5: I will run down to the money exchange now.
4: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
5: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
4: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
6: Kya aap aur UK ke sapne dekh rahe hain? To Mantra Holidays ke saath travel कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
7: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
8: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक
9: तुम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा
8: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ 29th अगस्त हेच एंड हाई स्कूल हैरो 30th अगस्त वुडमैनस्टोन स्कूल साउथ लंदन डिनर फ्रॉम 5 PM शो स्टार्ट्स एट 7 PM फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 0794756194
10: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
11: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
10: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs.
11: With the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
10: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
11: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
12: Winter's coming and Mera Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
13: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mera Boiler, get ready for winter.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
2: Experience the ultimate escape. 25 unforgettable days across Australia, breathtaking New Zealand and paradise in Fiji. Two departures, November and February. It's the holiday of a lifetime. First 10 bookings get 300 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
3: Asian Achievers Awards. Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Gold Breakfast with Kajal.

0: हो ताकी हो ताकी ताकी ताकी रे जब से मैं आँख में जाकी।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट ट्रेवल हब world.com।
2: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर furniture.co.uk पर जाएं।
4: Dad,
5: what's wrong, beta?
4: The Indian rupee has skyrocketed, and it's the best time to send money to Daddy in India.
5: I will run down to the money exchange now.
4: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app, and you'll get a fast service right from your phone.
5: Oi, bale! I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
4: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: सप्टेम्बर महीना में हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रह्यो छे।
8: तमे बता पुरुष हो तो लग्ने लग्ने कुवारा हो छो।
9: ए तमे स्त्री अमने छे ने पुरुषो ने खोटा ओगोवानो बंद करो।
7: कॉमेडी किंग निमेश शाह अने क्वीन ऑफ कॉमेडी मल्लिका शाह लईने आवी रह्या छे सुपर हिट गुजराती नाटक हालो पटेल भाईनी जानमा। हवे राइसली पॉटर्स बार इलफर्ड साउथ लंडन अने ल्यूटन मा। टिकट्स अने वधु माहिती माटे आजे ज कॉल करो मंजू ने ऑन 07931534270। नाटक नु नाम याद राखजो
10: हालो पटेल भाई।
11: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
12: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
13: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
12: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
13: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
12: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
13: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
14: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203 773 633 or visit mantraholidays.co.uk.

0: Laker Gold Traffic and Travel.
1: Good news starting at Redbridge. That North Circular southbound breakdown has been removed. Traffic returned to normal on the exit slip road. M11 south at North Circular Road delays still at 15 minutes. This is just within routine congestion. And Finchley Road emergency repairs down to one lane south from College Crescent to Swiss Cottage Gyratory. Boston Road, there is both approaches at Studley Grange Road. We've got a congestion to Uxbridge due to a faulty temporary traffic light system there. M4 onto the elevated section East Hayes to Brentford, 20 minute queues. And then Jubilee Line, trespass incident at Finchley Road, no service at all. There is severe disruption as well to buses this morning. Check before you head out. That's the latest traffic and travel.
2: It's been a while since my wife was diagnosed with dementia. And truthfully, it's only getting harder. I've needed so much help. Help when she just wouldn't eat. Help to keep her memories alive. And we will all need help to find a cure to end the devastation of dementia. I can't do this alone.
3: It will take a society to beat dementia. Alzheimer's Society.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड. और उत्सव भारत है स्टार भारत.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन.
6: हैव यू हैड अ बिरीवमेंट इन द family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
7: What would make dinner? प्लान्स थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
8: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
7: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
8: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वटवुड. कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे.
9: स्टार्टअप Media proudly presents Janmashtami Bhajan Jamming with the soulful Nandlal Changa.
10: कृष्णा जन्मनो आनंद उत्सव, एक रात एक अनुभव.
9: 5th September at Wembley, 6th September at Crawley. Tickets only £25. For tickets booking, visit Eventbrite, Skiddle, Videorama or StardomMediaLTD.com.
10: Stall and sponsorship mate call 07940924667. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: Get ready UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi and more surprises on the night.
12: Expect music, madness, family entertainment and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
11: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
12: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
11: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
13: इस दिसंबर ठंड को बोलो गुड बाय.
14: जॉइन महाराजा टूर्स ऑन अ 14 नाइट कैरेबियन क्रूज डिपार्टिंग 6 दिसंबर विद डायरेक्ट

0: अनलिमिटेड लड़ाई और अनलिमिटेड बातें। दुनिया के सबसे अनोखे इस भाई बहन के रिश्ते को सालों साल मीठा बनाता राखी का त्योहार। सेलिब्रेट करें अपनों के साथ और साथ साथ जैमिन फूड्स की एथनिक इंडियन वैरायटी भी, जहां है खाखरा, नमकीन, भाखरी, चिक्की, सोन पापड़ी, पिकल्स और बहुत कुछ।
1: अवेलेबल एट एथनिक ग्रोसरी स्टोर नियर यू। जैमिन फूड्स विशेस यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन।
2: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy three nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another three nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
3: Deirdre, look, it's the bottom Liz this time, sliding across their car bonnet.
4: Leave them be, Philip. They just claim confident.
3: Claim confident?
4: Yes, by doing their own car finance compensation claim, using the FCA's free tools to help, they'll keep 100% of what they're owed. I've just done ours too. Come on!
3: Deirdre? Deirdre? Come back here.
5: Start yours today with help from the Financial Conduct Authority. Search Claim Confident.
6: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड। मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड, रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे 10

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ye hai
3: Laika Gold.
0: Laika Gold, traffic and travel.
4: Morning, starting at Finchley Road, that emergency repair closure down to one lane continues southbound from College Crescent to Swiss Cottage Gyratory. It's adding congestion to your journey, so do plan ahead. Now, Boston Road through Hanwell, we've got faulty temporary traffic lights at Studley Grange Road, queuing through the roadworks there, and the M11 South North Circular Road delays of 10 minutes. Now, the M4 onto the elevated section, 20 minutes east Hayes to Brentford, and the A1 South at Stirling Corner, a busy one with 10-minute queues. Now, Jubilee Line, earlier trespass incident, been and gone at Finchley Road, but still severe delays remain, and it is strike action across buses right through today till Friday, so check before you head out. And that's the latest traffic and travel.
5: Ready for some good news about motoring costs? Get 10% off Tesco car insurance. Use your Tesco club card when you buy or renew a car policy with Tesco insurance and save 10% with club card prices. There's a range of cover options, and get this, we've even been named a Which Best Buy 2026 for our gold car insurance cover. To save your 10%, search Tesco car insurance and get your quote today. Club card required, excludes add-ons, T's and C's apply.
3: Ye hai Laika Gold.
6: Laika Gold. Apna ko, apno ke kareeb.
7: Aapka apna Utsav Plus ab hai Star Plus. Utsav Gold hai Star Gold. Aur Utsav Bharat hai Star Bharat.
8: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
9: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
10: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं, जिंदगी भर याद रह जाती हैं। और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके। इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लाइव इन कॉन्सर्ट संडे द 6th ऑफ सितंबर एट द मेशा लोहाना सेंटर लंदन। अपनी सीट्स अभी बुक कीजिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अश्विन ऑन 07956278228। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
11: 07300998823। नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग, और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
12: क्रिएटिव टीम इवेंट्स एंड Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
10: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
13: महाराजा टूर्स के साथ इस नवंबर एक्सप्लोर कीजिए सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड, सेंटोसा आइलैंड, बाटू केव्स, जेंटिंग हाइलैंड्स, बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेंपल्स, फिर पटाया और कोरल आइलैंड का मजा। फैंटास्टिकल फार ईस्ट फ्रॉम सिर्फ £2,799 पर पर्सन। फ्लाइट्स, 4-star होटल्स, इंडियन खाना और अमेजिंग एक्सकर्शंस सब इंक्लूडेड। विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956 154846।
14: इल्फर्ड, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए।
15: बीकानेर वाला परंपरा भी,
16: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसल, इल्फर्ड, IG26HA, कॉल 07555-506015।
17: Winter's coming and Mera Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
18: Don't miss out. Call 0208-150-2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mera Boiler, get ready for winter.
19: Sonatours.co.uk, 13 days Vietnam and Cambodia, departures every month, September to December. Get 100 off if you book this month. Call Sonatours now on 0208-951-0111.
20: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa, and LikeAGold.com.

0: Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday. This is Like a Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
1: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
1: विजिट TravelHubWorld.com.
0: श्री राम मंदिर किंग स्ट्रीट साउथ हॉल इनवाइट यू टू द श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व. परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी के पावन सानिध्य में 30 अगस्त रविवार को 26वीं शोभा यात्रा सुबह 11:30 बजे से श्री राम मंदिर से आरंभ होगी, जिसमें पूजन दर्शन भजन कीर्तन और प्रीति भोजन. इसके अतिरिक्त 4 सितम्बर को शाम 8 बजे से भव्य सेलिब्रेशन एट द श्री राम टेम्पल 22 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल. आप आइए और सबको लाइए.
2: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
3: हेलो रे हेलो, आज जन्माष्टमी कान्हा नारंगमा लंडन पड़ रंगा से स्टार्टअप मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा. भक्ति नासुर, गरबानी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग. 5th September, Wembley. 6th September, Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 0794092467. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
5: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
4: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
5: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
4: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
5: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
4: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
5: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
6: Search is changing.
7: Customers aren't just using Google anymore.
6: They're asking AI.
7: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
6: One business, one recommendation.
7: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
6: Will your business be the answer?
7: Or the one that got left behind?
6: The future of search has already started.
7: Have you? Visit HeartyHanks.com and make sure AI recommends you.
6: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
8: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
9: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
10: Mango season has arrived. Here also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
9: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
11: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
12: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.
13: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ 29th अगस्त हेच एंड हाई स्कूल हैरो 30th अगस्त वुडमैनस्टोन स्कूल साउथ लंदन डिनर फ्रॉम 5 PM शो स्टार्ट्स एट 7 PM फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947।

0: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान। देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410। साफो ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
2: व्हाटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
3: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
2: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
3: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस व्हाटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
4: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour. From the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
5: Across Greater London, this is Kajal on Breakfast.

0: breakfast with Kajal on Leica Gold.
1: मोहब्बत है क्या चीज, कुछ तो कहो, कहो ना, बोलो।

0: नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: मल भर के लिए
3: किशोर कुमार की मस्ती और मोहम्मद रफी की सोलफुल आवाज।
4: इब्रोक्स इवेंट्स प्रेजेंट्स द आइकॉनिक ड्यूओ रफी एंड किशोर फीचरिंग फहद यफ अकॉम्पनीड बाय सेवन पीस बैंड एंड मनीषा शर्मा।
3: गोल्डन एरा के एवरग्रीन गानों को रिलिव कीजिए संडे 6 सितंबर 5 PM एट हेरो आर्ट्स सेंटर। टिकट स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £25। बुक टिकट्स एट heroartscenter.com। बॉक्स ऑफिस का नंबर है 02037737161।
4: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क।
5: Dreaming of paradise?
6: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
5: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
6: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
5: At all protected.
7: Hare Krishna.
5: Celebrate Krishna Janamashtami in a truly vibrant way. Join us on Sunday the 30th of August from 2 PM to 8 PM at Navnath Center, Printing House Lane, Hayes, UB3 1AR. Live music, Ramayan play, Ras Leela, delicious food, fun fair, shopping and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742045154. Exclusive radio partner Leica Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Foods.
6: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
8: Visit mantraholidays.co.uk or call 02037736333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
9: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
10: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
9: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
10: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
9: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
10: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
11: Leica Gold, London का number one Asian retro music station, अब available है Greater London में 10:35 AM पर, DAB Digital Radio पर, Alexa पे बोलो play Leica Gold और online सुनो LeicaGold.com पे।
12: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: है
1: लाइका गोल्ड
2: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 Ealing Road वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
0: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड
0: विजिट ट्रेवल हब world.com
3: 0730-009-8823 नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेजन बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस एक्सेलेंट फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे विवेक हाउस वॉटफर्ड बुक ऑन व्हाट्सएप 0730-009-8823
4: Dad,
5: what's wrong, beta?
4: The Indian rupee has skyrocketed, and it's the best time to send money to Daddy in India.
5: I will run down to the money exchange now.
4: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app, and you'll get a fast service right from your phone.
5: Oi, bale bale! I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
6: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
7: Anuj Chopra Foundation proudly presents an evening of elegance. With the legendary Anup Chalota.
8: Jaam chalne lage, dil machalne lage.
7: On Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 PM. Show starts 6 PM. Hosted by Anisa Nasir. Tayyar ho jaiye ek yaadgar shaam ke liye, jahan ghazals milti hai Bollywood se. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners, Laika Radio Network.
9: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
10: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to try. Visit heraldplastic.com.
11: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
12: Honslow, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास
13: बीकानेर वाला परंपरा भी
14: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे राज कचौरी मिठाई और बहुत कुछ आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हॉन्स्लो TW3 1QT कॉल करें 0748768785
15: Like a Radio Network proud hospitality partner Ragasan Feel good hits in the sun with Leica Gold. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशन वाइड।
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर।

0: कैशियर।
1: गुड मॉर्निंग। स्वागत है संगीत प्रेमियों का मनोरंजन की दुनिया में।

0: मंगलवार वर्ष 2026 के अगस्त महीने की 25 तारीख और बहनों भाइयों कुछ यादें कुछ बातें जुड़ी हैं आज के दिन के साथ और कुछ अब जोड़ेंगे आज के दिन के इतिहास पर नजर डालें तो भाई ब्रिटिश भारतीय फौज में आपको मालूम है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में और सेकेंड वर्ल्ड वार में हिंदुस्तानी सैनिकों की क्या भूमिका रही थी लेकिन 1917 में जो अधिकार जो थे सैनिक थे ब्रिटिश सेना में हिंदुस्तान के उन्हें पहली बार किंग्स कमीशन दिया गया था नहीं तो वो सिपाही रहते थे फिर उन्हें तरक्की दी गई थी इसमें 1957 में भारतीय पोलो टीम ने फ्रांस में वर्ल्ड पोलो चैंपियनशिप जीती थी 2003 में मुंबई में 25 अगस्त को दो बम धमाके हुए थे पूरे देश को झकझोर दिया था उन्हें आज राज कपूर के बेटे राजीव कपूर की जयंती भी पड़ती भाई जन्म उनका 25 अगस्त 1962 में हुआ था वो दुनिया में अब नहीं है हरियाणा की एक पहलवान लड़की विनेश फोगाट भी आज ही के दिन जन्मी थी 25 अगस्त 1994 में कई लोगों की पुण्यतिथि उनमें एक वर्ल्ड फेमस नील आर्मस्ट्रांग की भी आज बरसी है चांद पर पहला कदम रखने वाले इनकी आज पुण्यतिथि है 25 अगस्त 2012 में उनकी डेथ हुई थी
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: Travel Hub.
2: At all protected.
1: Leica. This is Leica Gold. Gold. Reminisce those classics.
0: जो मेरे हाथ में है तेरा करम तेरी इनायत है जो मेरे वास्ते जीते जी ये दुनिया ही जन्नत है नजर भर के तुझे देखूं तो ईमान डोल जाता है तुझे नजरें झुकाकर देखना मेरी इबादत है मेरा कल आज और कल की फकत इतनी कहानी है कि थी उस भी कल भी थी कल भी और कल भी होगी आज भी तुझसे मोहब्बत है तू मेरी आरजू पहली तू मेरी आरजू पहली तू मेरी आखिरी ख्वाहिश तू दौलत है तू आदत है तू राहत है तू चाहत है किसकी बात कर रहा हूं वही जो सपने में मिलती है रियल में नहीं

0: चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, किशोर कुमार और लता जी की आवाजों में ये गीत दिले नादान फिल्म से हमने आपको सुनवाया। और इससे पहले भाई जिस गीत से कार्यक्रम की शुरुआत हुई, कोई लड़की मुझे कल रात सपने में मिली। भाई ये जो लड़कियां सपने में मिलती है ना, ये याद भी नहीं रहती, क्योंकि सपना ऐसी चीज होता है जो बड़ी जल्दी भूल जाता है व्यक्ति। कुछ थोड़ा सा धुंधला धुंधला याद होता है, वो भी अगर जागने के से थोड़ी देर पहले आए सपना तो। लेकिन रात में कई सपने ऐसे आते हैं जो रात में गायब हो जाते हैं दिलो दिमाग से, सूझते नहीं। अब उस लड़की को कहाँ ढूंढे जो सपने में मिलती है, आकर के रियल में नहीं मिलती, देखते हैं सपने। पर स्वप्न का मतलब ये भी तो होता है ना कि हम क्रिएट करते हैं। ऊपर वाले की दुनिया से भाई संतुष्ट नहीं हो करके, सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो हम अपनी दुनिया जो क्रिएट करते हैं उसको ही स्वपन कहते हैं, अपनापन, स्वपन। और उसमें भाई फिर जो चीज़ें दिन भर हमने सोची हैं, देखी हैं, गुजरे हैं, या महीने भर या साल पहले कुछ ऐसा हुआ है, वो धुंधली यादें रह गई, या फिर उनमें से हम सपना क्रिएट करते हैं। तो कोई लड़की मुझे कल रात सपने में मिली, छड़ यार की रखिया सच्ची गल्ला काम की बात करिए, बता के पाउंड का रेट क्या चल रहा है SBI में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK याद दिला रहे हैं भाई रेट अच्छा चल रहा है। अगर आप पैसे अपनों को भिजवाना चाहते हैं भारत में, तो आज का रेट है फॉर वन पाउंड यू कैन गेट 130.1 रुपीज, 130 रुपये और 10 पैसे। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच, ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। बट रिमेंबर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज एंड सीज अप्लाई। Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: The movie is starting. Turn off your phones.
3: Ah, very smart. The mobile have already completed its destinies.
4: Destinies? What destinies?
3: Bringing everyone to the movies. Because I decide people only need to download the app to get 2-for-1 cinema tickets every Tuesday or Wednesday. I amaze myself.
2: Alexander, phone off.
3: Get the Compare the Market app to enjoy 2-for-1 cinema tickets.
5: Participating cinemas, 2 standard tickets, cheapest free. Only on Tuesdays and Wednesdays, ends 19th of July 2027. T's and C's apply.
6: Ye hai. Like a gold. Like a gold. Apna gold, apna ke kareeb.
7: Aapka apna Utsav Plus ab hai Star Plus. Utsav Gold hai Star Gold. Aur Utsav Bharat hai Star Bharat.

0: ಪ್ಯಾಕ್ಕು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್.
1: ಹಲೋ ರೀ ಹಲೋ, ಆ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಕಾನ್ಹಾನ ರಂಗಮ್ಮ ಲಂಡನ್ ಪಡ್ರಂಗ ಸರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಭಜನ್ ಜಾಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ನಂದಲಾಲ್ ಛಾಂಗಾ. ಭಕ್ತಿನ ಸುರ್, ಗರ್ಬಾನಿ ಮಸ್ತಿ ಅನೆ ಕೃಷ್ಣ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಅನ್ಫರ್ಗೆಟಬಲ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. 5th September Wembley, 6th September Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 07940924667. Exclusive radio partner Laika Radio Network.
2: Shri Ram Mandir, King Street, South Hall invite you to the Shri Krishna Janmashtami Parv. Param Pujya Mahamandaleshwar Swami Gyananand Ji ke Pavan Sanidhya mein 30 August Ravivar ko 26vi Shobha Yatra subah 11:30 baje se Shri Ram Mandir se aarambh hogi, jisme pujan, darshan, bhajan, kirtan aur priti भोजन. इसके अतिरिक्त 4 सितंबर को शाम 8 बजे से भव्य सेलिब्रेशन एट द श्री राम टेम्पल, 22 किंग स्ट्रीट, साउथ हॉल. आप आइए और सबको लाइए.
3: Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
4: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम. पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक.
5: हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा.
4: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ. 29th अगस्त हेच एंड हाई स्कूल हैरो, 30th अगस्त वुडमिंस्टर स्कूल साउथ लंदन. डिनर फ्रॉम 5 PM, शो स्टार्ट्स एट 7 PM. फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947.
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
3: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour. From the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
9: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
10: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
11: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

तू में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा जा।

0: दिन बाकी। इस रक्षाबंधन खुशियों और स्वाद का जश्न मनाइए। जैमिन फूड्स, रिश्तों में मिठास हर सेलिब्रेशन के साथ।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
2: लाइका रेडियो नेटवर्क। अब आप रवि शर्मा से आज के खास खास समाचार सुनिए। भारत से आने वाली खबरों में पटना में स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ है, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और कुछ प्रोटेस्टर्स को हिरासत में लिया है। भारत के कर्नाटक राज्य में अमेजन स्टॉमर्ट और बिग बास्केट के फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। इंटरनेशनल खबरों में अमेरिका ने सीरिया को 47 साल के बाद आतंकवाद यानी टेररिज्म को बढ़ावा देने वाले देशों की लिस्ट से हटा लिया है। और डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा को नई धमकी, ऑटो सेक्टर पर 50% टैरिफ लगाने की बात कही है। पर पहले यह खबर भारत से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भारत में जाति जनगणना की प्रक्रिया पर प्रोसेस पर सवाल उठाए हैं। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि लोकसभा में लीडर प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक साझा लेटर लिखकर जाति गणना की मौजूदा प्रक्रिया पर यानी प्रोसेस पर चिंता जताई है। उन्होंने लिखा कि हमारी मांग साफ है, मौजूदा प्रश्नावली रद्द हो, जातियों की जो है सर्टिफाइड लिस्ट के आधार पर नई प्रश्नावली बने, नए सवाल पूछे जाएं और राजनीतिक दलों यानी पॉलिटिकल पार्टीज, एक्सपर्ट्स और जनता से व्यापक सलाह मशवरा किया जाए। स्कूल में हिजाब पहनने की मांग पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की इजाजत मांगने वाली एक मुस्लिम लड़की की याचिका खारिज कर दी है। लाइव लॉ के अनुसार कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पर्याप्त तो प्रमाण पेश नहीं कर सकी जिससे ये साबित हो सके कि इस्लाम में हिजाब पहनना एक जरूरी धार्मिक रस्म है। जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की पीठ ने कहा कि अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ड्रेस कोड सभी छात्रों के लिए समान, सद्भावनापूर्ण और गैर भेदभाव भावपूर्ण है तो उसे बनाए रखने में कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका ने 47 साल के बाद सीरिया को टेररिज्म बढ़ावा देने वाले देशों की लिस्ट से हटा दिया है। सीरिया के हटने के बाद अमेरिका की इस लिस्ट में केवल 3 देश बचे हैं जो ईरान, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा हैं। आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी के ईरान दौरे में क्या क्या हुआ, खबरें खुलकर सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी का ईरान का एक दिवसीय दौरा पूरा हो गया है। पाकिस्तानी फौज के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने इस दौरे को लेकर के कुछ बयान जारी किए हैं। ISPR ने कहा कि इस दौरे का मकसद अमेरिका ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को खत्म करना और बातचीत में आई रुकावट को दूर करना है। ISPR के मुताबिक अलग अलग बैठकों में तनाव को यानी टेंशन को बढ़ने से रोकने, हॉर्मोन स्टेट को फिर से खोलने और स्ट्रगल को जल्द खत्म करने के मुद्दों पर बातचीत हुई है। भारत में डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत राम रहीम सिंह को 21 दिन की फरलो मिली है। समाचार एजेंसी के अनुसार सूत्रों ने मंगलवार को ये जानकारी दी, ने आज ये जानकारी दी है। राम रहीम को अगस्त 2017 में एक दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया गया था और उन्हें 20 साल की सजा सुनाई गई थी। गुरमीत राम रहीम फिलहाल हरियाणा के रोहतक स्थित सुनारिया जेल में बंद हैं। इससे पहले उन्हें 30 दिन की पैरोल मिली थी, वहीं जनवरी में 40 दिन की भी पैरोल दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंगना रावत ने अभिनेता आशुतोष राणा, सोनू सूद, अभिनेत्री तापसी पन्नू, राखी सावंत और योग गुरु रामदेव पर तीखा हमला बोला है। कंगना ने कल कहा कि उन्हें असफल लोगों से कोई सलाह नहीं चाहिए, वो उनका ज्ञान नहीं सुनना चाहती। कंगना रानौत ने मीडिया से कहा कि आए दिन इस तरह के लोग, चाहे वो आशुतोष राणा हो या सोनू सूद हो, कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए। राखी सावंत जो मेरे कैरेक्टर पर टिप्पणी करती है, तापसी पन्नू जो मेरे माता पिता को अपमानित करती है, इन लोगों को मेरा ये पैगाम है कि आप अपने और मेरे बराबर 1% भी सफलता हासिल नहीं की है आपने, तो मेरे साथ बराबरी ना करें। मौसम का प्रकोप भाई दिल्ली में और उत्तर भारत में देखा जा सकता है। बारिश हो रही है, सड़कों पर पानी भर जाता है। दिल्ली के सेंट्रल ईस्ट, नई दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और शाहदरा व साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और दिल्ली के दूसरे इलाकों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और भारी बारिश की और भी संभावना जताई जा रही है, आशंका कहेंगे जताई जा रही है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से इंपोर्ट होने वाली कारों, ट्रकों और ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% करने की धमकी दी है। कल ट्रंप ने कनाडा के ऑटो सेक्टर पर टैरिफ दोगुना करने की बात कही। ट्रंप का कहना है कि नया टैरिफ 1 जनवरी से लागू किया जाएगा। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने कल शाम पाकिस्तान के फौज के जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अमेरिका से ईरान के प्रति अपना लहजा और रवैया बदलने की अपील की है। ईरानी प्रेसिडेंट ने कहा कि दबाव और धौंस के जरिए आगे बढ़ने से समझौतों को लागू करने का प्रोसेस और मुश्किल हो जाएगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक तेल टैंकर पर किसी अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया है। यह घटना सामने आई है। ब्रिटिश मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के मुताबिक हमले के बाद टैंकर का इंजन रूम क्षतिग्रस्त हो गया है, डैमेज हुआ है और जहाज डिसेबल हो गया है। सोमवार शाम जारी बयान में UKMT ने बताया है कि तेल टैंकर के कप्तान ने जहाज के एक अज्ञात प्रोजेक्टाइल की चपेट में आने की सूचना दी थी। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: ये है लाइका गोल्ड, टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ।

अक्सर कोई लड़की 16वें साल में लड़के को क्या कहती है, ज्यादा से ज्यादा यही कहेगी कि मेरा फोन टॉप अप करा दे।

0: करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasun.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
1: एवरी मॉर्निंग अ शॉपकीपर ओपन्स हिज डोर्स,
2: लाइट्स ऑन, शटर्स अप, स्टाफ रेडी,
1: बट टुडेज कस्टमर्स डोंट स्टार्ट ऑन द हाई स्ट्रीट।
2: दे स्टार्ट ऑन देयर फोन्स, स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम, वॉचिंग टिकटॉक, सर्चिंग गूगल।
1: एंड इफ योर बिजनेस इजंट देयर, दे डोंट वॉक पास्ट योर शॉप,
2: दे वॉक इनटू योर कंपेटिटर्स।
1: सोशल मीडिया टुडे डिसाइड्स हू गेट्स सीन एंड हू गेट्स फॉरगॉटन। इज योर बिजनेस पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन और इनविजिबल? विजिट hartyhanks.com बिफोर योर कंपेटिटर्स डू।
2: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार? यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
4: साफो ट्रेवल ऑटो प्रोटेक्टेड।
5: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है।
6: बीकानेर वाला परंपरा भी, स्वाद भी।
7: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स। आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल, UB2 4DB। कॉल 07795181001।
8: Winter's coming and Mera Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
9: Don't miss out. Call 0208-150-2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mera Boiler, get ready for winter.
10: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
11: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
12: गुड मॉर्निंग। लता जी और रफी साहब की आवाजों में ये गीत हमें लेकर के चलेगा 11 बजे की खबरों तक। और भूलिए नहीं, खबरों के उस पार होगा आज का विचार यानी चिंतन। जुड़े रहिएगा हमारे साथ।

0: स्वागत है श्रोताओं का मनोरंजन में। मनोरंजन कार्यक्रम के इस पड़ाव पर हम आपको सुनाते हैं थॉट फॉर द डे। आज का विचार यानी चिंतन, और आज के चिंतन में हम शामिल कर रहे हैं हाउंसलो से श्रीमती सारा पटेल का भेजा आलेख। सारा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लिखती हैं कि हम अक्सर कोई परोपकार का काम करते हैं तो फिर उसका गुणगान करके उसका पुण्य जो है वो क्षीण कर देते हैं। दान पुण्य देना, आप अपने पास से कुछ नहीं देते हैं, जो आपको उसने दिया है उसी के नाम पर आप किसी को कुछ देते हैं। बड़ी अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया है एक कहानी के माध्यम से कि सूफी फकीर हफीज एक जाने माने कवि भी थे यानी शायर। उन्होंने एक गीत लिखा और गीत ऐसा जैसे कोई अपनी प्रेमिका के लिए लिख रहा हो, अपने प्रेमी के लिए। गीत में उसने कहा कि तेरी ठोड़ी पर जो तिल का निशान है ना, जी चाहता है कि उस पर बुखारा वार के दे दूं। बुखारा शहर का नाम है, बुखारा दे दूं या समरकंद। भाई बुखारा और समरकंद, इनका मालिक उस समय था तैमूर लंग। आज जब उसके कान में ये गीत बड़ा पॉपुलर हो गया तो वहां तक पहुंचा तो वो बहुत नाराज हो गया। ये कौन होता है समरकंद और बुखारा देने वाला, मैं मालिक हूं। उसने हफीज को पकड़वा कर अपने दरबार में बुलाया और जब वो आया तो उसने कहा कि भाई हद हो गई। पहली बात तो ये कि किसी खूबसूरत औरत की ठोड़ी पर तिल देखकर तुमने ये कविता लिखी है क्या? वो इस काबिल नहीं है कि तुम बुखारा और समरकंद उसे दे दो। दूसरी बात यह कि बुखारा और समरकंद क्या तुम्हारे बाप के हैं जो तुम दे रहे हो? भाई वो मेरे हैं और मैं अभी जिंदा हूं। तुमने मुझसे पूछे बिना यह कविता क्यों लिखी, कैसे लिखी? समरकंद और बुखारा दे दूं तुम्हारे तिल के कारण। हफीज ये बात सुनकर के जोर से हंसने लगा। उसने कहा देखो सुनो, पहले तो जिसके तिल की मैं बात कर रहा हूं ना, ये समरकंद और बुखारा उसी के हैं जिसकी खूबसूरती का मैं बयान कर रहा हूं। वो है ऊपर वाला, तुम बीच में वैसे ही उपद्रव कर रहे हो। मेरा और उसके बीच का संवाद है, बातचीत है। इस सृष्टि के बनाने वाले, खूबसूरती को देने वाले, तिल देने वाले, चेहरा देने वाले, अरे वही है सब कुछ। समरकंद और बुखारा भी उसी के हैं, यानी हफीज जो है वो परमात्मा की बात कर रहा था। और आपको बता दें बहनों भाइयों, सूफी फकीर हमेशा परमात्मा को अपने प्रियतम या प्रियसी के रूप में देखते हैं। हफीज ने आगे कहा कि देखो हर चीज उसी की है, उसी को लौटा देने में क्या लगता है? अरे भाई उसने हमें दिया है, हम थोड़ा सा कुछ भी उसके नाम पर देते हैं तो हम एक चीज जो उसने दी थी उसको लौटा रहे हैं, इसमें हमारा क्या है? जिसकी है उसी को लौटाने में तुम रुकावट डाल रहे हो, पछताओगे। हफीज ने कहा सुनो, मैं तो गरीब आदमी हूं लेकिन मेरा दिल तो देखो, कुछ मेरे पास नहीं फिर भी मैं बुखारा और समरकंद जो है मैंने दे दिए। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी कितने कंजूस हो तुम कि शब्दों से भी नहीं दे पा रहे हो, अल्फाज में भी तुम्हारे यहां देने वाली भावना नहीं है। हफीज की ऐसी बात सुनते ही तैमूर लंग भी हंसने लगा।
1: चिंतन, चिंतन,
0: आंखें खुल गई। देने वाला देता है जो सबको दे दिन रैन। हम लोग अक्सर आरती में गाते हैं तन मन धन सब है तेरा, क्या लागे है मेरा, तेरा तुझको अर्पित, तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मेरा। हमारा तो कुछ भी नहीं है, हम तो खाली हाथ आए थे इस दुनिया में, खाली हाथ ही जाएंगे। यहां जो कुछ भी मिला है उसकी कृपा से मिला है। ये भावना मन में आते ही आपका मोह समाप्त हो जाएगा। तन मन धन उसी ने दिया है, उसी को सौंप दो, फिर स्वतंत्र विचरण करो।

0: तन मन धन सब कुछ तेरा है, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मेरा। भाई हमारा कुछ भी नहीं है, फिर भी हम शब्दों से, मन से, उदारता से अगर प्रभु के कुछ अर्पण करते हैं तो भाई बहुत ज़्यादा पत्थर लगवाने की या एडवर्टाइज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने पास से कुछ भी नहीं दे रहे हैं, जो कुछ भी है उसी का है। ये था आज का चिंतन, आज का विचार।
1: चिंतन
0: आज के चिंतन के लिए हमें आलेख मिला श्रीमती सारा पटेल जी की ओर से। सारा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चिंतन आपकी भी पहली पसंद है, सुनती भी हैं और सुनवाती भी हैं आप, थैंक यू वेरी मच। और भाई चिंतन की प्रशंसा में और भी बहुत सारे संदेश आ गए हैं, जिनमें कई नाम शामिल हैं, जैसे अर्जन जी हैं, नीलम जी हैं, पम्मी स्लाव में, सारा पटेल जी आपने भी धन्यवाद किया कि आपका चिंतन शामिल हुआ। मुझे यकीन था आप तो चिंतन ही नहीं पूरा प्रोग्राम हमेशा सुनती हैं। जगदीश जी बुशी में कीर्ति, जय श्री कृष्ण आपको मेरी ओर से, थैंक यू। विजय सटन में निर्मला जी, नैना शाह तो भाई हमारी डिक्शनरी हैं, कोई भी टॉपिक हो उस पर गीत ढूंढ के हमें सुझा देती हैं, थैंक यू वेरी मच नैना। अरविंदर जी, सो नाइस ऑफ यू, सुखी क्या बात है, एक आप सुखी है, एक हमारे पड़ोस में रहती है खुश दूसरे स्टूडियो में, ये नाम पढ़ करके खुशी होती है। देशराज बैसन साहब, क्या कहना आपका, सो नाइस ऑफ यू। भरत गंगा राम, जैस्मीन, विजय मॉरिशस वाले, हिना, मानसी, रंजन, हेतल सोलंकी, भाई आप सबका बहुत बहुत बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। कीप लिसनिंग। आपको याद दिला दूं कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। आज का चिंतन अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK याद दिला रहे हैं, अच्छा रेट है, पैसे भिजवाने हैं भारत तो गंभीरता से विचार कीजिए भाई। फॉर वन पाउंड दे आर गिविंग टूडे 130.1 रुपीज, 130.10 रुपए का रेट चल रहा है। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच, ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Like our gold. आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।

0: पे।
1: सेट गो माइक्रोवेव फूड कंटेनर,
2: हर मौके पर काम ये आए, घर घर खुशियाँ लाए।
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सेट गो माइक्रो।
3: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
4: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
5: Stardom Media proudly presents Janmashtami Bhajan Jamming with the soulful Nandlal Changa.
6: कृष्णना जन्मनो आनंदोत्सव एक रात एक अनुभव
5: 5th September at Wembley, 6th September at Crawley. Tickets only £25. For tickets booking, visit Eventbrite, Skiddle, Videorama or StardomMediaLTD.com.
6: Stall and sponsorship mate call 07940924667. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
7: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
8: 07300998823 नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेजन बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस एक्सेलेंट फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे विवेक हाउस वॉटफर्ड बुक ऑन व्हाट्सएप 07300

0: क्लासिकल टच है इस गीत में, एंजॉय कीजिए लता जी की आवाज।
1: द वन एंड ओनली वन रवि शर्मा ऑन योर नंबर वन रेडियो।

लता जी की आवाज में, जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली, नृत्य यानी भाई वो सांस्कृतिक भाषा है, डांस को नृत्य कहते हैं, लेकिन वो नृत्य जिसे ईश्वर को रिझाया जाता है, जो सिस्टमैटिक स्टडी से सीखा जाता है श्रद्धा पूर्वक। तो साहब ये गीत सुनवाते हुए हमें एक सूचना भी आपके साथ साझा करनी है। अरे सूचना नहीं है भाई, कंपटीशन का ऐलान करना है। आज हमारे कार्यक्रम में कंपटीशन शामिल है। बता दें आपको कि लाइका रेडियो नेटवर्क हैज टीम्ड अप विद सनातन इवेंट्स टू गिव अवे टिकट्स टू द स्टेज स्पेक्टिकल दिवाली स्टोरी। दिवाली स्टोरी भाई भगवान राम की कथा का के कई अंश जो आप इसमें देख सकेंगे, विच विल बी हेल्ड एट ओवो अरीना वेम्बली ऑन संडे 27th September। इसमें भाई एक बात और नोट कर लीजिए, स्टूडेंट प्री शो टेक्स प्लेस फ्रॉम 5 PM टू 5:45 PM। तो ये पौने घंटे का कार्यक्रम स्टूडेंट्स के लिए, 5:00 to 5:45 तक, एंड द मेन इवेंट फ्रॉम 6:15 to 9:30 PM, जो है 6:15 to 9:30 तक रात को जो मेन इवेंट होगा। तो इसमें भाई कंपटीशन में हम 2 टिकट्स दे रहे हैं, और किसको जाएंगे टिकट्स ये तो हमारा वो कंप्यूटर बताएगा। आप एंट्री करने के लिए सिर्फ एक शब्द लिख करके भेजिएगा, सेंड द वर्ड दिवाली, DIWALI, ये बेशक कैपिटल में लिख दें। उसके बाद आपको साथ में कंपटीशन में पार्टिसिपेशन के लिए लिखना है अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, भाई ये सारी चीज़ें आपको लिख करके भेजनी है। लेट मी टेल यू अगेन, विनर्स टिकट्स विल बी सेंट वाया द AXS ऐप, सो प्लीज़ एंश्योर, मेक श्योर कि यू शेयर योर ईमेल एड्रेस दैट इज़ रजिस्टर्ड टू द ऐप TNC अप्लाई, याद रखिएगा। तो भाई आपका ईमेल एड्रेस ज़रूर होना चाहिए जो ऐप के साथ रजिस्टर्ड हो, एंड वर्ड आपको भेजना है दिवाली, नाम और फोन नंबर लिखना मत भूलिएगा। स्वागत है आपका, कंपटीशन इज ऑन, 2 टिकट्स दिवाली के सनातन इवेंट्स जो है प्रस्तुत कर रहे हैं, और डेट भी नोट कर लीजिए, 27th September, इट इज संडे। ऑल द बेस्ट, और नंबर तो बताया नहीं मैंने जहां भेजना है, 07424 232323। ये नंबर बताने की आवश्यकता होती है क्या? अरे साहब रट लिया है लोगों ने, तो कईयों ने इतने बार इस नंबर को घुमाया है, हर कंपटीशन में जीतना चाहा है कि उनको वो आंखें बंद करके डायल कर सकते हैं उंगली से, या दबा सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पर 07424 232323। मनोरंजन विद रवि शर्मा।

शादी ब्याह में भाई ये जो सिटनियाँ होती है, छेड़खानियाँ होती हैं, ये दोनों परिवारों को और करीब लाने के लिए होती हैं। इसमें ये ऐसी ऐसी ट्रेडिशंस बनाई हैं लोगों ने कि भाई ये शादी का बंधन जो है बहुत सारे लोगों को जोड़ता है। सिर्फ दूल्हा दुल्हन ही नहीं बंधन में बंधते हैं, परिवार बंधते हैं, और भाई मर्यादाएं बनती हैं, ट्रेडिशंस बनती हैं। कभी कभी तो दूर देश में शादी होती है ना, विदेशों में, तो दो कल्चर मिलती हैं आपस में, दो भाषाएं जुड़ती हैं एक दूसरे के साथ। ये शादी भी एक ऐसा संबंध है भाई जो बहुत चीज़ों को जोड़ता है।

का वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।

0: रंजन विद रवि शर्मा।
1: और भाई भाइयों, ये गीत हमें लेकर के चलेगा 12 बजे की खबरों तक। सुरेश वाडकर का स्वर। साथ में स्वर जुड़ेगा लता जी का।

गीत को सुनकर आपको फिल्म याद आएगी राम तेरी गंगा मैली। और भाई एक एक्टर भी याद आएगा, वैसे वो एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर सभी भूमिकाओं में थोड़ा थोड़ा काम कर चुका था, लेकिन अचानक मौत उसे अपने पंजों में दबा के ले गई। राजीव कपूर।

जल्दी आना तो दोबारा, कहने को कह देते हैं भाई लेकिन जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। आज जन्मदिन है उनकी, याद आती है, राजीव कपूर वॉज बोर्न ऑन 25th ऑफ अगस्त इन 1960।

0: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
1: Let me tell you, the SBI UK giving in exchange with the pound in rupees, भारतीय मुद्रा में करेंसी में ये एक पाउंड के बदले आज दे रहे हैं, इस समय दे रहे हैं 129.8 रुपीस, 129 रुपए और 80 पैसे इस समय रेट चल रहा है, बदलता रहता है तो भाई, पर रेट अच्छा है। अगर आप भेजना चाहें तो यू कैन ट्रांसफ़र योर मनी वाया ब्रांच, किसी भी ब्रांच में जाके ऑनलाइन या फिर यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Gold, 10:35 AM.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।

0: नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: श्री राम मंदिर किंग स्ट्रीट साउथ हॉल इनवाइट यू टू द श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी के पावन सानिध्य में 30 अगस्त रविवार को 26वीं शोभा यात्रा सुबह 11:30 बजे से श्री राम मंदिर से आरंभ होगी, जिसमें पूजन, दर्शन, भजन, कीर्तन और प्रीति भोजन। इसके अतिरिक्त 4 सितंबर को शाम 8 बजे से भव्य सेलिब्रेशन एट द श्री राम टेम्पल 22 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल। आप आइए और सबको लाइए।

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशनवाइड.
1: Are we there yet?
2: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
3: Relax, I've booked the Uber already.
2: How? My roaming isn't even working yet.
3: I switched to Simsy before we left London.
2: Simsy? Since when are you the tech expert?
3: Since I decided I want a stress-free holiday.
4: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
5: T's and C's apply.
0: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your मीटिंग.
6: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
7: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
6: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
7: गारंटेड.
6: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल
7: फोन 0208574 8410.
6: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
8: सप्टेम्बर महीना में हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रह्यो छे.
9: तमे बता पुरुष हो तो लग्ने लग्ने कुवारा हो छो.
10: ए तमे स्त्री अमने छे ने पुरुषो नाम खोटा ओगोवानु बंद करो.
8: कॉमेडी किंग निमेश शाह अने क्वीन ऑफ कॉमेडी मल्लिका शाह लईने आवी रह्या छे सुपर हिट गुजराती नाटक हालो पटेल भाई नी जान मा. हवे राइसली पॉटर्स बार इलफर्ड साउथ लंडन अने ल्यूटन मा. टिकट्स अने वधु माहिती माटे आज ज कॉल करो मंजू ने ऑन 0793153427 0. नाटक नु नाम याद राखजो.
11: नोकझोंक सीक्रेट्स अनलिमिटेड लड़ाई और अनलिमिटेड बातें दुनिया के सबसे अनोखे इस भाई बहन के रिश्ते को सालों साल मीठा बनाता राखी का त्योहार सेलिब्रेट करें अपनों के साथ और साथ साथ जैमिन फूड्स की एथनिक इंडियन वैरायटी भी जहां है खाखरा नमकीन भाखरी चिक्की सोन पापड़ी पिकल्स और बहुत कुछ.
12: अवेलेबल एट एथनिक ग्रोसरी स्टोर नियर यू. जैमिन फूड्स विशेस यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन.
13: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
14: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
15: और आप जानते हैं बहनों भाइयों, इस सप्ताह के कलाकार हैं महान संगीतकार चित्रगुप्त श्रीवास्तव. भाई सिर्फ श्रीवास्तव का ही तो कोई इनको पहचान नहीं पाएगा. चित्रगुप्त नाम से प्रसिद्ध फिल्मों में इनके गीत, इनका संगीत, इनका व्यवहार भाई याद करते हैं. इनके दोनों बेटे आनंद और मिलिंद वो भी भाई खूब रंग जमा रहे हैं. चित्रगुप्त साहब, चित्रगुप्त श्रीवास्तव जो कहते हैं, आपको याद होगा एक और संगीतकार के नाम के साथ श्रीवास्तव लगा है, वो है आदेश श्रीवास्तव. वैसे अमिताभ बच्चन भी सरनेम उनका श्रीवास्तव है, वो यूज नहीं करते. भाई आदेश की पत्नी का जन्मदिन है. मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू. अगर भाई आपको याद होगा वो फिल्म थी, कौन सी थी, लव स्टोरी, जिसके गीत बड़े सुपरहिट हुए थे. उसमें काम किया था अपनी विजेता पंडित ने, बड़ी खूबसूरत लड़की, जतिन ललित की बहन मंदिर भी. और भाई पति तो संगीतकार, भाई जतिन ललित और मंदिर ये भी, और बहन सुलक्षणा पंडित गायिका. भाई पर हम उनकी नहीं, उस श्रीवास्तव परिवार की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आदेश श्रीवास्तव की पत्नी हैं विजेता और आज अपना जन्मदिन मना रही हैं. आदेश इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बेटे अभी भाई जवां हो गए हैं और उनके लिए अवसर तलाश कर रही है अपने बेटे को फिल्म इंडस्ट्री में जमाने के लिए. पर बात करें चित्रगुप्त की, तो चित्रगुप्त साहब के गाने एक से बढ़ के एक हिट है साहब. हर त्योहार के लिए, हर मौसम के लिए, हर रंग के लिए और हर मूड के लिए उन्होंने धुनें बनाई और वो धुनें शब्दों के साथ जुड़कर छाई, संगीत प्रेमियों के दिलों पर छाई. ऊपर आसमान में बुलंदी तक पहुंची

0: अरे सॉन्ग भाई, ये भाभी फिल्म का गीत आपने सुना, और शायद ब्लैक एंड व्हाइट थी फिल्म, लेकिन साहब गीतों ने ऐसा रंग जमाया, धूम मचाई फिल्म ने, और धूम मचाई चित्रगुप्त जी के संगीत ने। याद दिला दूं, ही इज द आर्टिस्ट ऑफ द वीक दिस वीक, और उनकी धुनों पर बने बहुत सारे गीत आपको सुनने को मिलेंगे संडे तक। जुड़े रहिएगा लाइका गोल्ड के साथ, लाइका रेडियो मिडलैंड के साथ, हम आपको ऐसे ऐसे गीत सुनवाते रहेंगे।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: Vijeta Pandit khud bhi gaati hai bhai, lekin jis film se unhone naam kamaya, apni jagah banayi मेन मुख्य भूमिका में हीरोइन की, वो इस फिल्म में आई थी, याद होगा आपको, और याद होगा ये गीत भी। मुझे तो याद है भाई, यूनिवर्सिटी के दिनों में खूब हमने इसको गाया और सुनवाया।

0: मैं आई आई आई आई आ जा। यादें जुड़ी हैं, यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में हमने एक प्रोग्राम किया था भाई, उसमें जो यूनिवर्सिटी मिस यूनिवर्सिटी थी हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे सुंदर लड़की, और उसने मेरे साथ रोल किया, तो इस गीत पर हम दोनों ने लिप सर्विस दी थी। तो जब वो कहती थी मैं आई आई आई, तो मुझे कहना होता था आ जा, पर इससे पहले मैं कहता, पूरा हॉल बोलता, सारे लड़के कहते आ जा। नहीं ऐसी बात नहीं है, इतने बुरे हम भी नहीं थे। जब मैं कहता कि मैं आया आया आया, तो लड़कियां कहती थी आ जा, लेकिन बहुत कम आवाज आती थी लड़कों की ज्यादा।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is Like a Gold.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.
4: उठे सबके कदम, देखो रम पम पम,

0: holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: और भाई हॉलीडे ब्रेक के लिए याद दिला रहे हैं साउथ हॉल ट्रेवल वाले कि भाई वो दुबई के लिए उनके पास फैंटास्टिक डील्स है, वेरी कम्पिटिटिव, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट देम साउथ हॉल ट्रेवल को संपर्क कीजिए उनसे। फ़ोन नंबर है 0208-574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: Leica Gold
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Visit TravelHubWorld.com.
4: Hare Krishna. Celebrate Krishna Janamashtami in a truly vibrant way. Join us on Sunday the 30th of August from 2 p.m. to 8 p.m. at Navnath Centre, Printing House Lane, Hayes, UB3 1AR. Live music, Ramayan play, Ras Leela, delicious food, fun fair, shopping and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742 045 154. Exclusive radio partner Leica Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Foods.
5: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
6: महाराजा टूर्स के साथ नेपाल और भूटान की आध्यात्मिक यात्रा पर चलिए। अपना सुकून ढूंढिए हिमालय की खूबसूरत वादियों, प्राचीन मोनेस्ट्रीज, रंग बिरंगी संस्कृति और यादगार अनुभवों का मजा लीजिए। सुकून, शांति और प्रकृति का अद्भुत संगम आपका इंतजार कर रहा है। आज ही महाराजा टूर्स के साथ अपनी नेपाल और भूटान यात्रा बुक कीजिए। विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846।
7: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
8: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
9: Dubai is the place. 11,
8: 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
10: Danube 11, 11. Danube Properties.
11: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.

0: off now, surplus, up her stock loss.
1: Have you noticed the way fans shout at football matches?
2: Oh, wake up!
1: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
3: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
4: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk. Tasty Track of the Hour brought to you by Coca Noodles.
5: कंपटीशन का नतीजा निकलने वाला है भाई, दो टिकट्स दांव पर लगे हैं। 27 सितंबर को एक जबरदस्त प्रोग्राम हो रहा है और नाम है दिवाली स्टोरी एट ओवो अरीना वेम्बली। दो टिकट्स दांव पर लगे हैं, एंट्री नहीं किया तो कंपटीशन में एंटर हो जाइए।

0: नो नो नो, इट्स नॉट अमिताभ बच्चन.
1: खड़ी रे निहारे
0: क्विज हिम. ये है साहब कॉमेडियन देवेन वर्मा.
1: सावरिया
0: आएंगे जरूर आएंगे.

0: पार्टी जम रही है। This is the Mika Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।

0: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
1: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
0: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
1: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
2: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
3: हेलो रे हेलो, आज जन्माष्टमी कान्हा ना रंगमा लंदन पड़ रंगा से। स्टार्ट अप मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा। भक्ति नासुर, गरबानी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन, ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग। 5th September, Wembley. 6th September, Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 07940924667. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
5: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
6: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee. Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
7: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour. From the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
8: हौसलो, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास।
9: बीकानेर वाला परंपरा भी स्वाद भी।
10: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ। आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हौसलो, TW3 1QT। कॉल करें 07487-687-885।
11: Up next, Bally Brumbats with Gold Afternoons on Leica Gold.
12: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
13: लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, होय गवा सारा चौपट मोरा रोजगार। ओ
14: रोजगार चौपट नहीं हुआ भाई, कार्यक्रम का समय हो गया और मुझे बताना है विनर का नाम। तो याद है आपको दिवाली नाम से वो नाटक जिस पर बड़ी तैयारियां चल रही है, जो एक बार हाउसफुल में प्रदर्शित हो चुका है यहाँ। अब आने वाले शो के लिए दो टिकट हम इनाम में दे रहे हैं और आप जानते हैं कब है कहाँ है, मैंने बता दिया है। दिवाली कॉम्पिटिशन में हमने सिर्फ यही मांगा था कि आप दिवाली लिख करके भेजें, साथ में भेजें अपना ईमेल एड्रेस, अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर भी, भाई जिन जिन की ये सारी जानकारी नहीं आई है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, लेकिन जिन्होंने क्वालिफाई किया, बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया, क्वालिफाई भी किया, जवाब भी, तो क्या जवाब तो था ही नहीं, बस ये दिवाली लिख रहा था, तो जिन्होंने लिखा विनर ढूंढना बड़ा मुश्किल था, लेकिन हमारे कंप्यूटर साहब ने मदद की और जो ड्रॉ में नाम निकला है बताता हूँ अभी।

गीत भोजपुरी भाषा में है, लेकिन भाई मुझे लगता है ये स्टाइल जो है संगीत का, ये नौशाद साहब का हो सकता है। लोक धुन, लोक संगीत और भाषा भी लोक भाषा। पर मुझे बताना है कंपटीशन का नतीजा 27 सितंबर को जो वेम्बली अरेना में शो हो रहा है दिवाली, कौन जा रहे, किन के लिए है? दो टिकट सुरक्षित हमारे पास। कॉन्ग्रेचुलेशन किसको दें? आप हैं जनाब, आप कौन? आप हैं शेखर आनंद। आपके टिकट्स भाई आप तक पहुंच जाएंगे, आपका ईमेल एड्रेस हमारे पास है। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अब जीतने वालों को बधाई, और इसमें तो सभी जीतते हैं, हारता तो कोई है नहीं। पर टिकट जा रहे हैं शेखर आनंद के हिस्से में। कॉन्ग्रेचुलेशन, एंजॉय द शो। हार जीत तो कॉम्पिटिशन्स में होती है भाई, हार ना हो तो जीत का मजा ही खत्म हो जाएगा।

जीतने वालों को बधाई, और भाई हारा तो कोई है ही नहीं, तो जीतने वालों को बहुत बहुत बधाई और हारने वालों को बहुत सारी तसल्ली। और वरना भाइयों, अब आगे एक बजे की खबरों के बाद बाली भाई स्टूडियो में तशरीफ ला रहे हैं, उनका इंतजार कीजिए। और रवि शर्मा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। हैव अ सुपर्ब डे।

0: Wow, what beautiful songs there. And to remember Rajiv Kapoor brings a lump in my throat. Hamara rishta tha ek cricket ka rishta. Jab bhi World Cup hota tha ya IPL hota tha, hum Khar mein ek hotel thi jisme Irish bar tha, jahan pe Guinness milti thi. Wahan pe hum milte the aur we used to drink Guinness and watch cricket all day. And my brother Bob also used to join us. He was also very close to Bob. So Rajiv Kapoor, jab when he passed away, that was a very sad day for me on 9th of February 2021. Vaise aaj unki 64th birth anniversary hai. Born on 25th August 1962. Born in Bombay and died in Mumbai. He got married to Aarti Sabharwal. That was in 2001. Tab umr thi kuch, I think he was 39 years old, yes. And he got divorced in 2003. Lekin kehte hai na, life begins at 40. So, wahi hua. He was active from 1983 to 1999. You can say, again, he got active from 2020 to 2021 for 1 year before he passed away. Lekin 16 saal, 1983 to 1999, kya life rahi? Bahut khoobsurat life thi as an actor, also a producer and a director. Debut film thi, Ek Jaan Hai Hum. Ek Jaan Hai Hum ka gaana abhi aapne suna, Yaad Teri Aayegi, Mujhko Bada Sataegi. Shabbir Kumar ne jo gaya tha. And Ram Teri Ganga Maili, that was his father's last direction. Raj Kapoor ji ki aakhri film jo thi, jo jinho unhone bete ke liye direct ki thi, Rajiv Kapoor ke liye, that was Ram Teri Ganga Maili. Kya life thi Kapoor khandan mein. अगर लाइफ हो तो और क्या चाहिए था. मतलब के इट वॉज अ वेरी रिच फैमिली विद रिच कल्चर्स एंड जितनी फिल्में इन्होंने की सब अच्छी अच्छी निकली. आसमान फिल्म थी 1984 में, 1985 में लवर बॉय, ज़बरदस्त फिल्म 1985 की हम तो चले परदेश 1988, फिर जिम्मेदार इन 1990. And after which he turned into producing and directing Aag Ka Darya. Kapoor, he actually acted in the film Aag Ka Darya with legendary actors Dilip Kumar and Rekha, which was shot and completed, but unfortunately it remains unreleased. Pitaji ke chale jaane ke baad producer ban gaye popular film Hena in 1991, which was directed by his elder brother Randhir Kapoor. And then 1996 mein directorial debut jo kiya tha, that was the unfortunately unsuccessful film Prem Granth, which starred his brother Rishi Kapoor and Madhuri Dixit. And then 1999 mein one of the producers of Aa Ab Laut Chale. आप लौट चले में मुझे मौका मिला था कुछ गाने गाने का, एंड टू गो एंड सिंग फॉर राज कपूर्स प्रोडक्शन, दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी. मेरी माँ को जब मैंने कहा मैं राज कपूर जी प्रोडक्शन के लिए मैं गा रहा हूँ, उन्होंने कहा पैसे मत लेना, तुझे तो पैसे देने चाहिए ऐसे बड़े बैनर के लिए काम करने के लिए. एंड मैंने जब ऋषि कपूर और रणधीर कपूर को ये बात कही, उन्होंने सबको बुला लिया आजू बाजू. आई थिंक उस दिन रात को हम ड्रिंक्स पी रहे थे सनी स्टूडियोज़ में, कथूरिया साहब वहाँ बैठे थे, यूज़ टू मैनेज सनी स्टूडियोज़, एंड वहाँ श्रवण जी भी थे. एंड रिकॉर्डिंग के बाद हम बैठ के एक ड्रिंक कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे चेक दिया और मैंने चेक वापस लौटा दिया, तो उन्होंने कहा कि क्यों. फिर मैंने जब कहा तो उन्होंने सबको बुला कर कहा कि ये कोई और ही चीज़ है, इसकी माँ ने कहा कि पैसे मत लेना तो मना कर रहे. सो वी ऑल said cheers and they never forgot this. Hamari dosti wahan se bahut gehri ban gayi. Anyway, hum gaane sunenge aaj Rajiv Kapoor ke. Hamari pyari listener jinhone mujhe kaha ke agar aap ye ट्रिब्यूट कर रहे हो तो फिल्म लावा का गाना, अब मुझे यही देखना पड़ेगा कि उसमें डिंपल कपाड़िया थी लावा में, लेकिन कौन सा गीत उन पे पिक्चराइज हुआ था, क्योंकि डिंपल कपाड़िया, आशा पारेख, राज बब्बर, राजीव कपूर, कुलभूषण खरबंडा, ये सब एक्टर्स जो थे, उसमें से कोई गाना राज बब्बर के ऊपर पिक्चराइज हुआ हो और राजीव कपूर के ऊपर ना हुआ हो, तो मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा गाना उन पे. अगर आपको मालूम हो तो मुझे बता दीजिएगा. यह सो इट बी वंडरफुल टू लिसन टू द सॉन्ग्स एज वेल. सुनते रहिएगा, मैं हूँ बाली ब्रह्म बट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स इन Greater London and in the Midlands. Ab the show is actually sponsored by Jaimin Foods.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you 129.8. I repeat, 129.8 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert is proudly sponsored by Jaimin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Jaimin Foods, the authentic taste of India.
0: If you have just joined in, we are doing a tribute of Rajiv Kapoor, his 64th birth anniversary. Next song from film Aasman.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
4: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
6: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on diwalistory.com.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
2: 07300998823 नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेजन बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस एक्सेलेंट फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे विवेक हाउस वॉटफर्ड बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823
0: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
3: मीनार ज्वेलर्स अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com कॉल 02087677627
4: लाइका गोल्ड लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइका gold.com पे
5: दिस इज लाइका गोल्ड फील गुड क्लासिक्स ऑल डे दिस इज लाइका गोल्ड
6: लाइका
5: Up to Kajal on breakfast at 6 AM and drive back with Sandy Shah at 4 PM. Lyca Gold. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
7: Gold Afternoons. Proudly sponsored by Jaimin Foods, the authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
8: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल travelhub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
9: travelhub बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
8: एट ऑल प्रोटेक्टेड
9: विजिट travelhubworld.com
10: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक
11: हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा
10: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ 29th अगस्त हेच एंड हाई स्कूल हैरो 30th अगस्त वुडमैनस्टोन स्कूल साउथ लंदन डिनर फ्रॉम 5 PM शो स्टार्ट्स एट 7 PM फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947
12: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 or 24 Our line.
13: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
14: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
13: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
14: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
13: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
14: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
13: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
14: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
15: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone. 11, 11.
6: 11.
0: Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
16: Dubai is the place.
0: 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
6: Danube 11. Danube Properties. Danube 11.
17: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
18: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
17: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
18: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
17: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
18: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
19: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
20: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
19: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
21: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
22: SonaTours.co.uk special offer Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of August and get up to 400 off. Call SonaTours now on 0208-951-0111.
4: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
0: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

अगला गीत जो है आ अब लौट चलें, उसमें जो रैप हुआ है वो मैंने किया है। ये गाना जसपिंदर नरूला ने गाया उसके राइट एट द बिगिनिंग, आई मीन इन बिटवीन मैंने कुछ रैप किया है, सुन लीजिएगा।

So that was a song in which I was sitting around and they said, कुछ कर दो ना यहाँ. मैंने कहा कर देता हूँ. So that was my experience. दूसरी राज के राज कपूर प्रोडक्शन वाली थी जुदाई फिल्म. तो उसमें भी कुछ अच्छे गाने मुझे मिले थे.

0: अब दो खूबसूरत गाने जो आपने सुने, लेकिन अगर मैं आपको इन फिल्मों के बारे में मैं बताऊं और इसके पीछे कौन था, यू वुड से वी डेफिनेटली मस्ट पे अ ट्रिब्यूट टू दिस मैन। यस, अब देखो फिल्म सफर, सफर कितनी सुपर डुपर हिट रही है ना, एंड फिल्म खामोशी वो भी कितनी सुपर डुपर हिट रही। अभी सफर में जैसे एक्टर्स शर्मिला टैगोर, राजेश खन्ना, फिरोज खान, अशोक कुमार, और खामोशी में देखा जाए तो एक्ट्रेस वहीदा रहमान, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र हु वाज स्पेशल अपीयरेंस, ऐसे ऐसे एक्टरों को डायरेक्ट करना और संगीत को भी निभाना, जैसे कि खामोशी में जो संगीत दिया दैट वाज एक्चुअली हेमंत कुमार का, क्योंकि फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड बाय हेमंत कुमार। डायरेक्ट किसने की थी अभी बताता हूं मैं। देखो इन फिल्मों के गाने आपने सुने, गुलजार की लिरिक्स फॉर द फिल्म खामोशी और सफर फिल्म, आपने जो गाने सुने, हर एक गाना सुपर डुपर हिट है उस फिल्म का, एंड अवार्ड्स भी कितने जीते, एंड द म्यूजिक वाज कंपोज बाय ऑफ कोर्स कल्याण जी आनंद जी, एंड लिरिक्स बाय इंदिवर जी। अब हम इन सब के लिए हम तालियां मारते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तालियां जाती है द मैन हु एक्चुअली डायरेक्टेड देम, डायरेक्टर असीत सेन। वी डोंट वांट टू कंफ्यूज हिम विद द एक्टर असीत सेन। वी ऑल नो असीत सेन एज द एक्टर वाज आल्सो वेरी पॉपुलर। अब असीत सेन जो डायरेक्टर थे उनके बारे में हम बात करते हैं। He was not only a director, he was also, you can say, multi-talented. He was a cinematographer, screenwriter and documentary films maker in Bengali and Hindi cinema. And also, one of the films was, kaun si thi, ek debut unhone kiya tha, Biplabi. Biplabi was an Assamese film, जिसमें ही वर्क्ड एज एन असिस्टेंट एज वेल। अब डेब्यू था उनका उसमें। असीत सेन वॉज बोर्न ऑन 24th ऑफ सितंबर 1922 इन बिक्रमपुर इन ढाका दैट इज बांग्लादेश, एंड ही पास्ड अवे ऑन 25th ऑफ अगस्त इन कोलकाता दैट इज 2001 साल में, एंड एट द एज ऑफ 78 इट इज हिज 25th डेथ एनिवर्सरी। ही डायरेक्टेड अबाउट 17 टू 80 हिंदी एंड बंगाली फिल्म्स, एंड ही वाज एक्टिव फॉर 35 इयर्स फ्रॉम 1948 टू 1983। 1948 में उनकी उम्र थी 26 साल की जब से उन्होंने काम शुरू किया, तब तक सीखते रहे, एंड देन एट द एज ऑफ 61 इन 1983 ही कॉल्ड इट अ रिटायरमेंट अंटिल ही पास्ड अवे इन एट द एज ऑफ 78। 17 साल रिटायरमेंट में बिताए, अ गुड लाइफ नो डाउट अबाउट इट। अब हिंदी फिल्में अगर मैं बताऊं, अभी मैंने सफर फिल्म का गाना आपको सुनाया, दैट वाज एक्चुअली ओरिजिनली मेड इन बंगाली, विच वाज चला चल, एंड वो फिल्म फिर सफर बनी। दूसरी फिल्म खामोशी, खामोशी वाज आल्सो अ रीमेक ऑफ अ बंगाली फिल्म दीप ज्वेले जाए। ऐसी फिल्में जो बंगाली में सुपर डुपर हिट थी और इन्होंने हिंदी में बनाई, हाउ कैन वी फॉरगेट अ पर्सन लाइक दिस। जी हाँ, ही वॉज मैरिड टू रेखा सेन एंड दे हैड वन सन एज वेल। अब करियर के बारे में, स्कूल के बाद हम देखा जाए तो ही वॉज ड्रॉन टूवर्ड्स फोटोग्राफी विद द हेल्प ऑफ हिज अंकल हु वॉज रामानंद सेन गुप्ता। अब स्कूल स्कूलिंग खत्म करने के बाद वो कलकत्ता चले गए, विच इज नाउ कोलकाता. वहां पे रामानंद सेन गुप्ता हिज अंकल वॉज अ क्वाइट एन एस्टैब्लिश्ड सिनेमाटोग्राफर. सो असीत सेन स्टार्टेड अटेंडिंग शूटिंग्स ऑफ हिंदी फिल्म्स एंड देन ही जॉइंड भारत लक्ष्मी प्रोडक्शंस एज एन असिस्टेंट टू डी के मेहता. सून ही बिकेम एन असिस्टेंट टू हिज अंकल. फिर बंगाली फिल्म हुई एंड देन ही बिकेम एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर. पहला पैशन उनका उन्होंने पूरा किया बिकॉज इट गेव हिम कॉन्फिडेंस वॉज ए डॉक्यूमेंट्री ही मेड फॉलोइंग महात्मा गांधीज टूर्स ऑफ नावखाली एंड पटना. महात्मा गांधी जब गए थे इन जगहों पे, नावखाली और पटना, उसके बारे में इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी. उसमें से कॉन्फिडेंस गेन हुआ एंड ही मेड इज डायरेक्टोरियल डेब्यू विद द एसएमएस लैंग्वेज फिल्म बिप्लबी इन 1948 एंड देन उसके बाद चला चल इन 1956 विच अगेन बिकेम द हिंदी फिल्म सफर. कट टू, लेट मी टेल यू ऑल द हिंदी फिल्म्स दैट ही डायरेक्टेड. पहला आदमी, that was in 1950 as assistant screenwriter. But that was like experience at the age of 28. Anokhi Raat, yes, do you remember Sanjeev Kumar ki? That was directed by Asit Sen. Khamoshi, jaise maine kaha, Ma aur Mamta, Sharafat, 1970 ki film. फिर आई अनोखा दान 1972 की. अनाड़ी, नॉट द राज कपूर वन, बट अनाड़ी फिल्म इन 1975 वॉज डायरेक्टेड बाय असीत सेन. बैराग, दिलीप कुमार साहब एंड सायरा बानू जी इन 1976. वकील, एक थी वकील बाबू 1982 की एंड देन मेहंदी इन 1983. सो दीज वर द हिंदी फिल्म्स that he had actually directed. इन फिल्मों के हम गाने सुनेंगे और उनको ट्रिब्यूट देते हैं. असीत सेन, मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट on Like a Gold with Gold Afternoons in Greater London and in the Midlands. We are sponsored by Jaimin Foods.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can fetch you 129.8 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply. 129.8 Indian rupees to a pound.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Jaimin Gold Afternoons with Bali Brambat. Bali Brambat. Jaimin Foods, bilkul ghar jaisa swad aur ghar jaisi hi baat. Available at Asian stores near you.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
4: व्हाटफुड में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
5: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
4: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
5: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस व्हाटफुड. कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे.
6: Imagine turning your next cake box order into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for four people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments and summer memories with Cake Box. And you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box. Celebrate today and make memories forever. TNCs apply.
7: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
8: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
7: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
8: And you didn't pay those massive roaming charges?
7: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
9: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
10: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
11: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
12: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
13: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
14: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
15: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London. Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
16: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

सलील चौधरी, सलील चौधरी का संगीत और योगेश की लिरिक्स। रेडियो नेटवर्क। फिल्म खामोशी।

I hope you enjoyed the tribute of Asit Sen. भूलिएगा नहीं इतनी खूबसूरत फिल्मों में जिन्होंने डायरेक्शन किया, जैसे कि सफर, खामोशी, ममता,

0: Boys.
1: Bali Brumba.
2: Welcome to Like a Gold, Gold Afternoons in the third hour. Main hoon Bali Brumba with Gold Afternoons available on 1035 medium wave, DAB, Alexa, Google Home and LikeAGold.com. Available in Greater London and also the Midlands, Leica Radio Midlands. It's the 413th day of Leica Radio Midlands in this week number 35, 237th day of 2026 with 128 days left in the year, 344th day of Leica Gold 4th year. 4 saal ho chuke. It's the, of course, they'll say rebranded on 13th of September 2022 and 854th day of Leica Greater Manchester. 4 baje dekhoge to there'll be Sandy Shah with Drive Time and Raj Patan on Leica Radio Midlands. Unka bhi saath nibhaiyega. Aur aage kya hone wala hai? Hamare artist of the week happens to be none other than Chitragupt, the father of Anand and Milind. Hamare artist of the week. Maine film Akash Deep ka ek geet chuna hai aapke liye. And next jo aane wala hai, wo suniyega, bada maza aayega.
3: Win with Jamin Foods.
2: Okay, Leica Radio Network is celebrating Raksha Bandhan by giving away a box of Jamin food treats. Jamin is renowned for mouth-watering range of namkeen, pickles, mukhwas and papad, plus exciting ready meals like khichdi, poha, shira, pav bhaji and veg biryani. Mere muh mein paani aa raha hai. Ready in just 5 minutes by adding hot water. jaminsnacks.com. Listen this Raksha Bandhan Friday, 28th of August. 28th of August, bhuliyega nahi, on Friday, for you to win on a Leica Radio Network, the hamper. Yes, specially from none other than Jamin Foods. You will love what they put into the hamper. So, judiyega aur ready rahiyega.
4: बस 3 दिन बाकी, इस रक्षाबंधन खुशियों और स्वाद का जश्न मनाइए जैमिन फूड्स, रिश्तों में मिठास हर सेलिब्रेशन के साथ.
3: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
2: £1 in British sterling can get you up to 129.8 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
3: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Leica Gold.
4: Jamin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
5: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
6: Dreaming of paradise?
7: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
6: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
7: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
6: At all protected.
8: Stardom Media proudly presents Janmashtami Bhajan Jamming with the soulful Nandlal Changa.
9: Govind bolo Hari Gopal.
10: Krishna Janmanu Anand Utsav. Ekaj Raat Ekaj Anubhav.
8: Nand 5th September at Wembley, 6th September at Crawley. Tickets only £25. For tickets booking, visit Eventbrite, Skiddle, Videorama or stardommedialtd.com.
10: Stall and sponsorship mate call 07940924667. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
0: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
11: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
12: पल भर के लिए
13: किशोर कुमार की मस्ती और मोहम्मद रफी की सोलफुल आवाज। एब्रोक्स इवेंट्स प्रेजेंट्स द आइकॉनिक ड्यूओ रफी एंड किशोर, फीचरिंग फहर याफ अकॉम्पनीड बाय 7-piece बैंड एंड मनीषा शर्मा। गोल्डन एरा के एवरग्रीन गानों को रिलिव कीजिए संडे 6 सितंबर 5 PM एट हेरो आर्ट सेंटर। टिकट स्टार्ट फ्रॉम जस्ट 25 pounds। बुक टिकट्स एट heroartcenter.com। बॉक्स ऑफिस का नंबर है 0203-773-7161। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइक Radio Network.
14: Search is changing.
15: Customers aren't just using Google anymore.
14: They're asking AI.
15: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
14: One business, one recommendation.
15: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
14: Will your business be the answer?
15: Or the one that got left behind?
14: The future of search has already started.
15: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
14: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
16: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना।
17: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
16: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
18: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
19: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
18: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
19: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
18: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
19: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
20: Sonatours.co.uk special offers with amazing discount. 16 days China for 2027. Book before the end of August and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours on 0208-951-0111.
21: Minar Jewelers. अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए Minar Jewelers पर, 181 Upper Tooting Road, या विजिट कीजिए minarjewelers.com। Call 0208-767-7627.
22: Like a gold, London का number one Asian retro music station अब available है Greater London में 10:35 AM पर DAB digital radio पर। Alexa पे बोलो play Like a Gold और online सुनो likeagold.com पे।
23: Artist of the week is brought to you by our new podcast Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
2: Our artist of the week, Chitragupt. Kabhi dhoop, kabhi chhaon.

कितनी खूबसूरत फिल्म, और गाया कवि प्रदीप ने, लिखा भी कवि प्रदीप जी ने। सुख दुख दोनों, फिल्म है कभी धूप कभी छांव, 1971 की फिल्म। हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक चित्रगुप्त जी, जिन्होंने ये कंपोज किया।

0: the legend. Kavita Krishnamurti performs live at the Royal Albert Hall on Sunday, 1st of November, brought to you by Sanatan Events as a Diwali special. Tickets from the venue box office, yani ke venue box office of Royal Albert Hall. Tickets from the venue box office, exclusive radio partner, Leica Radio Network. And Leica Radio Network has confirmed a partnership with the premium hospitality brand Ragasan. Details at LeicaRadio.com.
1: Leica Gold.
2: Leica Gold. Officially London's number one Asian retro music station.
3: Gold Afternoons is sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
5: Visit TravelHubWorld.com.
6: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं, जिंदगी भर याद रह जाती हैं. और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके. इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लाइव इन कॉन्सर्ट संडे द 6th ऑफ सितंबर एट द मेशा लोहाना सेंटर लंदन. अपनी सीट्स अभी बुक कीजिए. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अश्विन ऑन 07956278228. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Leica रेडियो नेटवर्क.
7: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
8: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर Your travel mantra.

0: Bally Brumbutt on Gold Afternoons. Like a
1: gold. Hello, hello, hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m. Like a Gold and Like a Radio Midlands.
2: Gold Afternoons with Bally Brumbutt. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. Bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
4: श्री राम मंदिर किंग स्ट्रीट साउथ हॉल इनवाइट यू टू द श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व. परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी के पावन सानिध्य में 30 अगस्त रविवार को 26वीं शोभा यात्रा सुबह 11:30 बजे से श्री राम मंदिर से आरंभ होगी, जिसमें पूजन, दर्शन, भजन, कीर्तन और प्रीति भोजन. इसके अतिरिक्त 4 सितम्बर को शाम 8 बजे से भव्य सेलिब्रेशन एट द श्री राम टेम्पल, 22 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल. आप आइए और सबको लाइए.
5: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं.
6: Celebrate Krishna Janmashtami in a truly vibrant way. Join us on Sunday the 30th of August from 2 p.m. to 8 p.m. at Navnath Centre, Printing House Lane, Hayes, UB3 1AR. Live music, Ramayan play, Rasleela, delicious food, fun fair, shopping and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742045154. Exclusive radio partner, Leica Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Foods.
7: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
8: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998

0: जी हाँ, दो फिल्में और दोनों का टाइटल रंगीला रे। ये फिल्म थी रंगीला और दूसरी है प्रेम पुजारी, उसमें भी एक गाना है। एनीवे, सैंडी शाह इज हियर टू पुश मी आउट ऑफ द स्टूडियोज एंड टेकिंग ओवर एंड ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स इज गोना बी राजपतन। कल तक के लिए इजाजत, बाली ब्रह्म भट्ट का नमस्कार।
1: The sun is out, and so are the summer hits on Leica Gold.

0: This is Sandy Shah on Gold Drive. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
1: TravelHub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
1: Visit TravelHubWorld.com.
2: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from HeraldPlastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit HeraldPlastic.com.
3: Watford में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी.
4: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
3: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
4: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफोर्ड. कॉल 0192322774. बुक योर टेबल टुडे. श्री राम मंदिर किंग स्ट्रीट साउथ हॉल इनवाइट यू टू द श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व. परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी के पावन सानिध्य में 30 अगस्त रविवार को 26वीं शोभा यात्रा सुबह 11:30 बजे से श्री राम मंदिर से आरंभ होगी, जिसमें पूजन, दर्शन, भजन, कीर्तन और प्रीति भोजन. इसके अतिरिक्त 4 सितम्बर को शाम 8 बजे से भव्य सेलिब्रेशन एट द श्री राम टेम्पल 22 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल. आप आइए और सबको लाइए.
5: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
7: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
8: SonaTours.co.uk special offer holiday of a lifetime with amazing discount. 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of August and get 600 off or lose the discount. Call SonaTours now on 0208 951 0111.

0: सरप्लस अब है स्टॉप लॉस।
1: नोकझोंक, सीक्रेट्स, अनलिमिटेड लड़ाई और अनलिमिटेड बातें, दुनिया के सबसे अनोखे इस भाई बहन के रिश्ते को सालों साल मीठा बनाता राखी का त्योहार। सेलिब्रेट करें अपनों के साथ और साथ साथ जैमिन फूड्स की एथनिक इंडियन वैरायटी भी, जहां है खाखरा, नमकीन, भाखरी, चिक्की, सोन पापड़ी, पिकल्स और बहुत कुछ।
2: अवेलेबल एट एथनिक ग्रोसरी स्टोर नियर यू। जैमिन फूड्स विशेस यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन।
3: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
4: हाय, मैं हूँ अश्विनी। हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी। फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग आप सभी के लिए।

0: Like a Gold
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
2: Visit TravelHubWorld.com.
3: Dad.
4: What's wrong, beta?
3: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
4: I will run down to the money exchange now.
3: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
4: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
3: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
5: Maharaja Tours ke saath is November explore kijiye Singapore, Malaysia or Thailand, Sentosa Island, Batu Caves, Genting Highlands, Bangkok ke floating markets or beautiful temples, phir Pattaya or Coral Island ka maza. Fantastical Far East from sirf £2,799 per person. Flights, 4-star hotels, Indian khana or amazing excursions, sab included. Visit maharajatours.co.uk or call 07956154846.
6: Mukesh aur Lata Mangeshkar ke evergreen गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम. पंकज सोठा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक.
7: तुम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा.
6: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ 29th अगस्त हेज एंड हाई स्कूल हैरो, 30th अगस्त वुडमैनस्टोन स्कूल साउथ लंदन. डिनर फ्रॉम 5 PM. शो स्टार्ट्स एट 7 PM. फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947.
8: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड.
9: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
10: रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
11: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री. परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
10: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
11: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस.
10: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island Escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
3: 07300998923. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. मेक एवरीडे ग्रैंड.
5: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
7: देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम.
6: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे.
7: तो दुबई के लिए तैयार? यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410. दैट्स 85748410.
8: साफो ट्रेवल. At all protected.
0: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour. From the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
9: The Evening Show with Ashwini.
10: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड. मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड. रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए.
11: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: आइए वेलकम, दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी, जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है। आप सभी सुन रहे हैं लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। आप और हम बनाएंगे साथ में टेरिफिक ट्यूसडे। पूछें आप सबसे, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना, होंगे ही, और नहीं थे तो अब हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। बिकॉज टेरिफिक ट्यूसडे में ऐसी जो प्लेलिस्ट मैंने लगाई है ना, और अभी आते से क्लास भी शुरू होने वाली है, तो सारे के सारे हमारे प्यारे प्यारे धुरंधर्स रेडी। अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है, सब आप लोग आके अपनी अटेंडेंस लगवा रहे हैं, अपने हालचाल मुझे बता रहे हैं। मैंने आज तो आप सभी को लिख के भेज दिया है जो मैं जानना चाहती हूँ, है ना। तो हमेशा की तरह सवाल रहेगा, लाइफ थियोरी रहेगी, गपशप रहेगी, मस्ती रहेगी, इंटरेक्शन रहेगा। सो आज का सवाल, तैयार हैं सब, है ना? आपको गीत जो हैं बड़े वॉल्यूम में सुनना पसंद है या हेडफोन्स पे आराम से धीमी आवाज में? फॉर मी, मेरी तो एनर्जी ऐसी ना, ऐसे मतलब सातवें आसमान में पहुंच जाती है ऐसे बड़े से वॉल्यूम में। अभी इनफैक्ट ये पहले दो गीत जो यहाँ पे बजाए है ना, तो स्टूडियो ने ऐसे उड़ के बाहर निकल के जाना था, मतलब यहाँ से कैनरी वॉफ से उड़ के कहीं। आई जस्ट गेट द एनर्जी जब मैं गीतों को ऐसे बड़े वॉल्यूम पे सुनती हूँ ना, मुझे बड़ा मज़ा आता है। हेडफोन्स पॉडकास्ट के लिए मैं यूज़ करती हूँ जनरली, जब मुझे पॉडकास्ट सुनना होता है शांति से विद फोकस, वो जो चीज़ें सुननी होती है, बिकॉज गीत तो हमारे जैसे ना नस नस में अभी बैठ चुके हैं ना, ये जो म्यूज़िक है। फॉर मी इट्स बिग वॉल्यूम। आप लोग बताइए, बड़े वॉल्यूम पे गीत सुनना पसंद है या फिर हेडफोन्स पे धीमी सी इसमें आवाज़ में?
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 129 इंडियन रुपये 80 पैसे। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI Yono मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

0: आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में बुढ़ा मिल गया इस फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत। मैंने सवाल आप सबसे पूछा है कि बड़े वॉल्यूम पे आपको गीतों को सुनना पसंद है या धीमी आवाज में गीतों को सुनना पसंद है, तो नो डाउट आपकी और मेरी इतनी जमती क्यों है, है ना। सारे के सारे माइंड्स वी थिंक अलाइक, जितने भी लोग मुझे भी कह रहे हैं वो सब कह रहे हैं अरे मतलब बिल्कुल क्या कहते हैं डंके की चोट पे बड़े वॉल्यूम में गीत सुन रहे हैं। अरे सुनना भी चाहिए, द इवनिंग शो विद अश्विनी है अभी तो जो गीत ऐसे हैं कि चुपचाप तो बैठ ही नहीं सकते ना, ऐसे हो ही नहीं सकता। अच्छा गीतों को गाने की जो ये परंपरा होती है ना, कई लोग जो हैं बड़े सुर ताल में गाते हैं, कोशिश सभी की होती है कि सुर ताल में रहो। सो आई रिमेंबर वंस दैट दिस वाज फ्यू इयर्स अगो, सो इट वाज माय बेटे का बर्थडे ना, हम लोग लंदन ब्रिज की तरफ हम लोग घूमते हुए जा रहे थे एंड कुछ तो मैंने म्यूज़िक सुना एंड आई स्टार्टेड सिंगिंग लाउडली। हाँ तो मी विथ माई फैमिली हम लोग सब जा रहे थे एंड माई बेटा ही वॉज अ टीनेजर दैट टाइम नाउ इज ग्रोन अप, तो अभी ही एक्चुअली मतलब ना ही जस्ट गेव मी दैट लुक कि आई व्हाट्स द प्रॉब्लम विथ यू, इतने बड़े बड़े इसमें तुम क्यों आवाज़ ऐसे क्यों गा रही हो, लोग तुम्हारे हाथ में पैसे रख के जाएंगे, एंड आई वॉज लाइक अरे कमाई हो जाएगी अपनी, एंड ही वॉज सो एम्बेरस्ड बट यू नो टीनेजर्स का कैसे होता है मूडी तो ही जस्ट दूर दूर से जाते हैं कि मैं आपको नहीं जानता हूँ टाइप्स। बट यार संगीत ऐसी चीज़ है, अगर हमने उसको इन्जॉय नहीं किया तो हमने जिंदगी जी ही क्या। लाइफ थियरी थोड़ी देर में आ रही है, सुनते रहिए।
1: This is Ash Winnie on Like a Gold. आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
2: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
3: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
2: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
3: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274, बुक योर टेबल टुडे।
1: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana, original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
4: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशन वाइड।
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड।
2: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
3: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
4: Get ready UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi and more surprises on the night.
5: Expect music, madness, family entertainment and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026 happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
4: 31st October, Mattioli Arena Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
5: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
4: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
6: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London.
7: Leica Cool, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Leica Cool aur online suno leicagold.com pe.
6: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
0: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: चलिए मिला लेंगे एक बार घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है, 7:31। जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया, आप सभी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी। और इस समय तक आप और हम जब पहुंच जाते हैं तो कोई ना कोई लाइफ थियरी मैं आप सबको सुनाती हूँ। आज की लाइफ थियरी का नाम मैंने रखा है द अपोजिट थियरी। अपोजिट मतलब विपरीत कंप्लीटली। ओके, छोटी सी चीज, हमारे स्कूल डेज में एक लेसन हुआ करता था द जेंटलमैन। तो ये एक ऐसा इंसान था जो दुनिया भर में बाहर जब भी काम पे जाता, किसी से मिलता, किसी ना किसी चीज़ को लेकर इस इंसान को चिढ़ मचती और फिर ये लोगों से लड़ पड़ता। हर रोज़ ऐसा होता कि ये बाहर निकलता हुआ किसी ना किसी चीज़ पे से कुछ तो तू तू मैं होती है। एंड दिस मैन ही यूज़ टू बी वेरी अपसेट विद पीपल। हम लोग ने क्या, ये आदमी रोज़ आता है, रोज़ कुछ ना कुछ तो ये झंझट करता है। और जब ये भाई साहब घर पे जाते हैं तो ये अपने बेस्ट बिहेवियर पे रहते हैं, अपनी बीवी अपने बच्चों के साथ में बड़े प्यार से पेश आते हैं। तो लोगों को ये समझ भी नहीं आता था कि क्या चीज़ है यार, ये इंसान बाहर की दुनिया में सबसे लड़ता झगड़ता है जबकि उनके से प्यार से रहना चाहिए। और घर पे जाते से एकदम शांत, एकदम मिलनसार, एकदम प्लेजेंट पर्सनैलिटी, ये तो गलत चीज़ है। बट एक्चुअली ये सही चीज़ थी इन अ वे। अब आते हैं असली पॉइंट पे, द अपोजिट थियरी। आप और हम सभी क्या करते हैं ना, एक्चुअली वी आर टू फेस्ड पीपल। आई डोंट नो व्हाई वी ह्यूमंस डू दैट। जैसे आप हैं वैसे क्यों नहीं लोगों को दिखा सकते? लोग स्ट्रेंजर्स के साथ में बड़े प्यार से पेश आते हैं, बड़े वेल मैनर्ड एटिकेट्स के साथ में इतने अच्छे बिहेवियर पे रहते हैं कि वो स्ट्रेंजर भी सोचता है कि आ हाँ आज मुझे कितने अच्छे लोग मिल गए। एंड यही अच्छे लोग घर पे जाके घर वालों से बात ना करना, उनसे इंटरेक्शन ना करना, उनका दिन कैसा रहा, उन्हें कोई तकलीफ़ है, या मुंह अपना बना के बैठ जाओ, मैं तो थक गई। यू नो इट्स एप्लीकेबल ऑन बोथ द जेंडर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक जेंडर, बोथ द जेंडर्स के लिए। तो ये जो एक चीज़ है ना, ये हमें उल्टा करना चाहिए। एक्चुअली जिन लोगों के साथ में हमें अपनी ज़िंदगी निकालनी है, उस घर में, उस इंसान के साथ में, उस परिवार के साथ में, Why don't we give our best behaviors to them? चलो बाहर की दुनिया में तो भाई वो कौन से अपने हैं कि उनके सामने हम असलियत में जैसे हैं वैसे रहे। ऐसे भी कई लोग इस चीज़ को लेके दलील देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपने उस परिवार के साथ में ज़्यादा अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए rather than strangers। अच्छा आप देखो, आप होटल्स में जाएंगे, चीज़ें कितनी अच्छे से, जब आप निकलते हैं उस रेस्टोरेंट में से, टेबल पे से खा पी के कितनी अच्छे से चीज़ें वापस रख के आएंगे। फॉरगेट दैट, वॉशरूम्स भी जाते हैं जब, तब वॉशरूम पे कितना अच्छे से सब करके आते हैं बाहर की, ना हम तो बाहर आए थे भाई, इस रेस्टोरेंट में इतना ये सब, इट्स सो क्लीन पॉश। एंड वही घर पर होता है तो टेकन फॉर ग्रांटेड होती है चीज़ें। किचन देख लो, यू नेम इट एंड यू कैन जस्ट थिंक अबाउट All those things, जहाँ पे घर में और बाहर आपकी जो विचार पद्धति, जो बिहेवियर है, वो डिफरेंस आपको समझ में आ जाता है। तो ये जो अपोजिट बिहेवियर है, क्या आपका बिहेवियर ऐसा कुछ है कि बाहर अच्छे और घर में अलग? मुझे इसका जवाब मत दीजिए, ये आपके लिए था। ये थियरी मैंने सोच के इसीलिए बनाई थी क्योंकि मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है लोगों के साथ में, दैट पीपल डू दैट एंड लेट्स नॉट डू दैट, है ना? क्योंकि जो हमारे अपने हैं उनको दुखा के और स्ट्रेंजर्स के साथ अच्छे रहने में कोई मीनिंग नहीं है। प्यार से अच्छे से उन लोगों के साथ में रहना चाहिए जिनके साथ में आप जिंदगी का ज़्यादा टाइम बिताते। कैसी लगी थ्योरी जरूर बताइएगा। जी हाँ, तो जैमिन के साथ में हम राखी सेलिब्रेट करने वाले हैं और आप लोगों को यमी यमी हम गिव अवे देने वाले हैं, बॉक्सेस देने वाले हैं, गिफ्ट्स देने वाले हैं, लेकिन नॉट टुडे, ऑन फ्राइडे। सो जैमिन की जो रेंज है हमारे लिए, वो लेके आते हैं नमकीन हो, पिकल्स हो, मुखवास हो, पापड़ हो, आहा यमी होते हैं। एंड साथ में इनकी जो रेडी मील्स हैं, चाहे खिचड़ी, पोहा, शीरा, पाव भाजी, वेज बिरयानी, बिल्कुल 5 मिनट में ये रेडी होते हैं। करना क्या है कि वो जो बॉक्स है उसमें 5 मिनट के लिए आप हॉट वाटर डाल दीजिए एंड जैमिन के रेडी स्नैक्स, रेडी मील्स आपके लिए रेडी है भाई, jaiminsnacks.com। रक्षाबंधन के दिन 28 अगस्त को आप लाइका रेडियो नेटवर्क पे जरूर जीतेंगे कुछ ना कुछ, तब ध्यान से सुनिएगा।
3: बस 3 दिन बाकी, इस रक्षाबंधन खुशियों और स्वाद का जश्न मनाइए जैमिन फूड्स, रिश्तों में मिठास हर सेलिब्रेशन के साथ।
0: दिस इज लाइका गोल्ड, द इवनिंग शो विद अश्विनी। यादों की बारात।

0: देयर, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। कैच मी ऑन माय शो गोल्ड आफ्टरनून्स विद ट्रिब्यूट्स, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने ऑन लाइक अ गोल्ड एंड लाइक अ रेडियो मिडलैंड्स फ्रॉम 1 PM टू 4 PM।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Ash Winnie on Like a Gold.
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com।
4: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम। पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक।
5: तुम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा।
4: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ। 29th अगस्त हेच एंड हाई स्कूल हैरो, 30th अगस्त वुडमेंस्टर्न स्कूल साउथ लंदन। डिनर फ्रॉम 5 PM, शो स्टार्ट्स एट 7 PM। फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 0794756194।
6: Rock.

0: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
1: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
2: Dubai is the place.
1: 11, 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
3: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
4: 073-00-99-8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
5: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
6: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
7: Southall Travel, Atoll Protected.
8: Southall, Desi Swad ka asli adda aa gaya hai.
9: Bikaner wala parampara bhi.
10: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स. आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल, UB2 4DB. कॉल 07795181001.

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: Ashwini, brightening up your weeknights. It's summer on the Leica Radio Network.

0: gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 130.02 इंडियन रुपी, 378.82 पाकिस्तानी रुपी, 448.28 श्रीलंकन रुपी, 167.84 बांग्लादेशी टाका, 89.77 अफगान अफगानी, 1.36 यूएस डॉलर्स, 176.61 कैनियन शिलिंग, 63.59 मॉरिशियन रुपी.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the LIKA Radio mobile app now. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £109.49 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, पर देखते हैं टाइम कितना हुआ है. ओए होए होए, क्या बात है, ये आवर, इस आवर के आखिरी गाने में भी पहुंच गए हम. कितना बिजी रहा ना ये आवर. इट्स नियरली 7:50, 7:50, 25th of August, टेरिफिक ट्यूसडे. आप और हम मना रहे हैं ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी जी. तो जो आप सबसे मैंने सवाल पूछा उसका आंसर आप सबने दिया. साथ में यहाँ पे व्हाट्सएप में जो मैसेजेस आए हैं मुझे, मैंने आज आप सबसे पूछा है कि अच्छा एक अच्छी बात, व्हाट वन गुड थिंग हैपेंड विथ यू टुडे, एंड एक्चुअली आई एम स्माइलिंग. आप सबके जो आंसर्स आपने भेजे हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आई एम श्योर आप लोग सब स्माइल करते हुए मुझे ये मैसेजेस लिख रहे हैं. फॉर मी आज मेरे लिए क्या अच्छा था, सो आई मेड मेथी एंड लहसुन की सब्ज़ी. आई लव दैट सब्ज़ी अ लॉट. एंड बड़ा तामझाम बड़ा होता है यार ये लीफी वेजिटेबल्स के साथ में ना, उनको पहले चुनो अलग से करो एंड सब्ज़ी धोना काटना पिटना. एनी वेज राइट, सो आई लव दैट सब्ज़ी. एंड जब आपकी फेवरेट सब्ज़ी बना के खाते हो तो उसका मज़ा कुछ और होता है, यू नो. वो एक तो चीज़ वो होती है पहली चीज़. एंड दूसरा यहाँ पर जब मैं आती हूँ, दिस इज़ माई हैप्पी जोन. आप लोगों से आके जब गपशप होती है, बातचीत होती है, और देखो ना रोज़ के इतने सवाल जवाब आप लोगों के साथ में मैं करती हूँ, और एक्चुअली अच्छे स्टूडेंट्स की तरह ना एंड वेरी मतलब फोकस्ड आप ये शो सुनते हो. आई कैन एक्चुअली सी कि बहुत फोकस्ड रहते हो आप लोग सब. एंड द सवाल विच आई आस्क यू, उन सभी के जवाब यू एक्चुअली राइट डाउन बड़ी सिंसियरिटी के साथ में. सो अपने आप को एक तो शाबाशी दे दीजिए आप लोग सब, है ना, पीठ पे ऐसे शाबाशी दीजिए. एंड कीप स्माइलिंग, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर अ हेक्टिक डे फॉर एवरी वन. एक तो अपने आप को आप शाबाशी देना ज़रूर शुरू कर दीजिए. एवरी टाइम आई गो टू जिम, और जिम से मैं जब भी निकलती हूँ तो मैं अपने आप को शाबाशी देती हूँ जिम में. द पीपल हु आर अराउंड मी, दे एक्चुअली जस्ट गिव दैट वियर्ड लुक एंड आई एम लाइक ओके. बट आई डेफिनेटली नीड टू थैंक माई बॉडी कि मैं आलसी बन सकती थी, बट माई बॉडी हेल्प मी टू कम इन द जिम एंड यू नो वर्कआउट करने के लिए. छोटी छोटी खुशियाँ हैं जी हमारे पास में, पता नहीं क्यों हम बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं, है ना. एंड आई एम श्योर कि आपका और मेरा ये जो सुहाना सफ़र है, इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है. थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए. एंड इस आवर का आखिरी गीत की तरफ चलते हैं आप और हम.
0: This is Ashwini on Like a Gold.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत.
3: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
4: Relax, I've booked the Uber already.
3: How? My roaming isn't even working yet.
4: I switched to Simsy before we left London.
3: Simsy? Since when are you the tech expert?
4: Since I decided I want a stress-free holiday.
5: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
6: T's and C's apply. Shri Ram Mandir, King Street, South Hall invite you to the Shri Krishna Janmashtami Parv. Param Pujya Mahamandaleshwar Swami Gyananand Ji ke Pavan Saridhya mein 30 August Ravivar ko 26vi Shobha Yatra subah 11:30 baje se Shri Ram Mandir se aarambh hogi, jisme pujan, darshan, bhajan, kirtan aur priti bhojan. Iske atirikt 4 September ko sham 8 baje se bhavya celebration at the Shri Ram Temple, 22 King Street, South Hall. Aap aaiye aur sabko laiye.
7: Celebrate Krishna Janmashtami in a truly vibrant way. Join us on Sunday the 30th of August from 2 p.m. to 8 p.m. at Navnath Centre, Printing House Lane, Hayes, UB3 1AR. Live music, Ramayan play, Ras Leela, delicious food, fun fair, shopping and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742 045 154. Exclusive radio partner Leica Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Food.
8: સપ્ટેમ્બર મહિનામાં હાસ્યનો ડબલ ધમાકો ફરી આવી રહ્યો છે.
9: તમે બધા પુરુષો તો લગ્ને લગ્ને કુવારા હો છો.
10: એ તમે સ્ત્રીઓ અમને છે ને પુરુષોને આમ ખોટા ઓગવવાનું બંધ કરો.
8: કોમેડી કિંગ નિમેશ શાહ અને ક્વીન ઓફ કોમેડી મલ્લિકા શાહ લઈને આવી રહ્યા છે સુપરહિટ ગુજરાતી નાટક હાલો પટેલ ભાઈની જાનમાં. હવે રાઇસલી, પોટર્સ બાર, ઇલફર્ડ, સાઉથ લંડન અને લ્યુટનમાં. ટિકિટ્સ અને વધુ માહિતી માટે આજે જ કોલ કરો મંજુને ઓન 07931534270. નાટકનું નામ યાદ રાખજો.
11: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
12: Every morning a shopkeeper opens his doors.
13: Lights on, shutters up, staff ready.
12: But today's customers don't start on the high street.
13: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
12: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
13: They walk into your competitors.
12: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
13: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
14: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019 238 83100. Atoll protected.
15: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com. कॉल 02087677627.
16: द इवनिंग शो विद अश्विनी.
17: लंदन्स बिगेस्ट क्लासिक्स ऑल डे. दिस इज लाइक अ गोल्ड.

0: 112 such deaths were recorded among 18 to 24-year-olds last year. Ministers say they're investing £25 million this year towards accommodation. A trial's been pushed back in America of the man accused of making the bomb that downed Pan Am Flight 103 over Lockerbie in 1988. A US judge claims there's new evidence. And millions of women in England will be able to carry out a cervical cancer screening at home. Testing kits will be offered to those behind on their appointments. From Sky News, I'm Faye Rowlands.
1: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group. Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
2: लंदन में आज रात थंडरी शॉवर्स हैं, हल्की फुल्की हवा, 17 डिग्री टेम्परेचर. कल मैक्सिमम 26, मिनिमम 18 थंडरी शॉवर्स होंगे. मैनचेस्टर में हल्के फुल्के बादल, हल्की फुल्की हवा, 14 डिग्री टेम्परेचर. मैक्सिमम 23, मिनिमम 15 थंडरी शॉवर्स.
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
2: ओह जी क्या बात. सेकेंड आवर आप और हम इस म्यूजिकल जर्नी में बढ़ रहे हैं आगे. वॉल्यूम तो अप रखिए, पक्का रखिए, बिकॉज अब जो नेक्स्ट गीत आ रहे हैं, दो बैक टू बैक गीत, उसे आप एंजॉय करने वाले हैं. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंडन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर.
3: लाइका
1: गोल्ड. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
4: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
5: Travel Hub.
4: At all protected.
1: Leica. The evening show with.

0: वेलकम, दिस इज द सेकेंड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी। एंड इस आवर का आगाज 90s वाले बच्चों को खुश कर दिया एंड 70s वाले बच्चों को हमने खुश कर दिया। पहला गीत लिया था हमने जीत फिल्म से, यारा ओ यारा, विनोद राठौड़ अलका याग्निक की आवाज़ में। सेकेंड हमने लिया था गीत फ्रॉम सरगम फिल्म एंड मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर की आवाज़ में। ओके, सो द लाइफ थियरी है, आप लोगों ने आज बहुत पसंद की है। द अपोजिट थियरी बिल्कुल आप सबको पसंद आई है एंड अराउंड द ग्लोब भी जो हमें सुन रहे हैं उन सब के भी मैसेजेस आए हैं। तहे दिल से धन्यवाद आप सभी को, शुक्रिया कि आप सब जो हैं ये थियरीज़ जो मैं लेके आती हूँ उसे इतना पसंद करते हैं। वही चीज़ है, देखिए हम लोग जानते सब कुछ हैं लेकिन किसी और से सुनने में ना फिर कहीं ना कहीं वो फिर से हमें याद दिलाता है कि एक्चुअली हमारा पर्पस है क्या लाइफ में और हम कर क्या रहे हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकेंड, तो ये चीज़ ये जो है थियरी अपलोड हो चुकी है ऑन माई इंस्टाग्राम रेडियो वाली अश्विनी, दैट इज़ माई इंस्टाग्राम, वहाँ पर आप देख और सुन सकते हैं ये चीज़। घर घर की कहानी। ओके, तो इस सेगमेंट को शुरू करने से पहले, सो यस आई विल बी ट्रैवलिंग टू इंडिया दिस ईयर सम टाइम एंड आई विल बी गोइंग टू काशी। अब काशी बनारस जो कह लीजिए नाम उसका है, कहते हैं कि जब आपका बुलावा आता है तब आप वहाँ पे पहुँचते हैं। एंड ऐसा भी कहा जाता है कि भाई अपने पेरेंट्स को लेके जब तक वो ज़िंदा हैं उन्हें लेके ज़रा काशी जाइए, है ना। काशी का अपना एक अद्भुत एक्सपीरियंस है। जनरली अपने पेरेंट्स को हम जब वो इस पृथ्वी थल से चले जाते हैं तब उन्हें लेके जाते हैं काशी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक वो है हमारे साथ में इस प्लैनेट पे उनकी खुशी देखिएगा जब आप उन्हें लेके जाएंगे। तो ये एक तो डेफिनेटली इट्स ऑन माय टू डू लिस्ट एंड देन सेकंड ट्रिप टू जयपुर एंड राजस्थान वाली जो ट्रिप है दैट ट्रिप आई एम गोइंग विद माय बेस्ट फ्रेंड्स। तो देखिए ज़िंदगी में कंपार्टमेंटलाइज करना मैं सीख गई हूँ हर एक रिश्ते को। सो विथ मी आई एम ब्लेस्ड विथ अमेजिंग बेस्टीज़ इन माई लाइफ एंड दीज बेस्टीज़ आर राइट फ्रॉम माई स्कूल। मतलब जो लोग इंडिया से हैं उन्हें पता होगा कि LKG मतलब लोअर KG जिसे हम कहते हैं, तब से हम लोग जो फ्रेंड्स हैं अभी भी हम लोग फ्रेंड्स हैं एंड वी ऑल डिसाइडेड कि हम चारों मिलके कहीं जाएंगे। सो ये हमारी ट्रिप है और हम लोगों ने वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड इस ट्रिप को। अब कई लोग कहेंगे कि यार तुमने अनाउंस क्यों कर दिया ये चीज़, अब फिर नज़र लग जाती है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली आई डोंट बिलीव इन नज़र, बिकॉज जब चीज़ें आपकी होनी होती ना लाइफ में तो हो जाती हैं। एंड इस चीज़ को शेयर करने का तात्पर्य इतना ही था कि शायद आपको भी लगे कि आपके पेरेंट्स हैं वहाँ तो उन्हें लेके जाना चाहिए, काशी बनारस घुमा के लाना चाहिए। एंड अगर आपके लाइफ में फ्रेंड्स है ना, बहुत ब्यूटीफुल रिश्ता है यार ये, तो जाइए अपने फ्रेंड्स के साथ में ना, घूम के आइए, मस्ती करके आइए, नई मेमोरीज बनाई हैं। बस पुरानी मेमोरीज हम तब किया करते थे, ऐसा हुआ करता था, ओके दैट्स रियली नाइस, नई मेमोरीज क्यों नहीं बनाते। तो हर एक रिश्ते के साथ में आई जनरली डू दिस कि आई हैव बीन विथ माई सिबलिंग्स, उनके साथ में मैं अलग से गई हूँ। सो आई ऑलवेज मेक दिस पॉइंट कि मैं पापा के साथ अलग घूमी हूँ, मम्मी के साथ में घूमी हूँ, आई हैव मेड अमेजिंग मेमोरीज़। ज़िंदगी ना इसीलिए मैं एट द एंड ऑफ द शो कहती हूँ कि बहुत खूबसूरत है, जीना आना चाहिए हम सबको। ना जाने हम क्या ही चीज़ें लेके बैठ जाते हैं ज़िंदगी में और खूबसूरत ज़िंदगी को बदसूरत बना देते हैं। आज का ज्ञान अभी काफ़ी हुआ, समाचार समाप्त हुए। अब आज का बिल्कुल मज़ेदार और चटकदार सवाल घर घर की कहानी में, दो सवाल एक ही सवाल में समझ लीजिएगा। एक तो जब शॉपिंग करने जाते हैं तो आपके घर में ये कौन कहता है कि हम बस दो तीन चीज़ें लेने आए हैं यहाँ पे, ये वाला एक चीज़। और दूसरा, शॉपिंग करके सारी आइल्स के बाहर आके वो जो बिलिंग काउंटर है वहाँ पे कौन पहले आके खड़ा होता है, ज़रा आंसर दीजिए। This is Leica. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch. एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 129.80 रुपए। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और एसबीआई योनो मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।

0: updates for London at Breakfast and Drive.
1: From the first time they lose a
2: baby tooth, look, Mum,
1: to the countless times they forget to mention their
3: ingredients for food tech tomorrow,
1: to the last time you hear that school was
4: alright.
1: Kids grow up fast. Luckily at Tesco, we have back-to-school uniform that grows with them, including everything they need like trousers and skirts with adjustable hems and waists. So you can focus less on the cost and more on all this. Tesco, every little helps. Available in the majority of larger stores and online.
0: This is Ash Winnie on Like a Gold.
5: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
6: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
5: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स your travel mantra.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
9: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं.
10: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
11: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन 4 मजेदार फ्लेवर्स.
10: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
12: फ्रॉम ब्रेथटेकिंग वेडिंग ज्वेलरी टू द फाइनेस्ट डायमंड रिंग्स, डू कम इन एंड सी अस एट मीनार ज्वेलर्स टू क्रिएट द परफेक्ट सिंबल ऑफ योर लव स्टोरी. मीनार ज्वेलर्स, द Diamond Specialists. Call 020-8767-2142.
0: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com. Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
13: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है, 8:32। मैंने घर घर की कहानी में आप सबसे सवाल पूछा है कि जब भी शॉपिंग जाते हैं कपल्स या घर के जो भी लोग जब शॉपिंग जाते हैं तो भाई हम बस एक दो चीज़ें लेने ही आए हैं। एक तो ये चीज़ पहले कौन बोलता है, हस्बैंड वाइफ में से या पेरेंट्स के साथ में गए या भाई बहन के साथ में गए, एंड शॉपिंग फटाफट करके बिलिंग काउंटर के पास में आके कौन खड़ा रहता है, जल्दी जल्दी बताइए। बहुत सारे लोग अपने अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, बड़े मज़ेदार मज़ेदार अनुभव हैं। आज का टेरिफिक ट्यूसडे, सही मायने में टेरिफिक ट्यूसडे हो रहा है। अनवर एंड सुलक्षणा पंडित की आवाज़ में थोड़ी सी बेवफाई से सुनाए आपको मौसम, मौसम लवली, मौसम एक्चुअली मौसम लवली हो गया ना, गर्मी चली गई, ओए होए होए होए कितनी गर्मी थी, आए भगवान। कहा जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर तो और भी ज़्यादा गर्मी होने वाली, तो फैंस, कूलर्स, एसीज जो हैं वो अभी से अपनी व्यवस्थाएं आप करके रखें, फिर बाद में बोलना मत कि अश्विनी तुमने याद नहीं दिलाया था।
0: ये है Leica Gold, making summer feel better. This is Leica Gold.

0: किशोर कुमार एंड आशा भोसले की आवाज में द ग्रेट गैम्बलर विच वॉज रिलीज्ड इन 1979 उस फिल्म से पहले पहले प्यार की। बिल्कुल आप सभी एंजॉय कर रहे हैं शो, आप लोगों के मैसेजेस आते जा रहे हैं, हमारे सवालों के जवाब भी आप लोग दिए जा रहे हैं रिलेटेड टू शॉपिंग। अच्छा एक मज़ेदार सा किस्सा हुआ है टेक्सास में, जहाँ पे एक यूनिवर्सिटी जाने वाली जो ये लड़की है शी वॉज कॉट इन ड्रिंक एंड ड्राइव और उनके लाइसेंस पे पॉइंट्स आ गए एंड दैट वॉज टेकन अवे। तो अब ये मोहतरमा जो है ये उनका कहना है कि भाई अब मैं चल के कहाँ जाऊँगी कॉलेज में, तो उन्होंने बाबी की जो एक गाड़ी रहती ना जो बच्चे लेके घूमते हैं दैट जीप काइंड ऑफ स्टफ, शी गॉट दैट वन एंड पूरे कॉलेज एरिया में उनके डॉम में वो लेके घूमते रहती है, कॉलेज भी वही लेके जाती है। अब इस पर कौन तो क्या ही तो इनको बोलेगा, इसलिए वो बिल्कुल आराम से घूमती है। और उनकी देखा देखी उनके कॉलेज की दूसरी फ्रेंड ने भी जो बारबी की जो एक जीप या कार टाइप जो होता है वो लेके घूम रहे हैं, ये क्लिप मैंने देखा और मुझे बड़ी हंसी आई। उनके जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं कुछ तो खुश हैं कि कितनी इनोवेशन है देखो। अब उस बच्ची का कहना है कि भाई अब मुझे चलने में बड़ा कंटाला आता है, इसीलिए मैंने ये बारबी वाली कार लेके मैं घूम रही हूँ। अलग अलग लोग, अलग अलग विषय, अलग अलग आइडियाज।
1: ये है लाइका गोल्ड।
2: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
0: एपिसोड नंबर 30 आ चुका है द ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट शो के, होस्टेड बाय हमारे अपने दीप राजा। दीप राजा ने कई मुद्दों पे बात की है, यहाँ पे कई चीज़ों पे बात की है। वी लर्न हाउ द ऑर्गेनाइजेशंस वर्क टर्न्स आइडियाज इनटू लास्टिंग इम्पैक्ट्स एंड हाउ इट रीचेस 18.8 मिलियन पीपल अक्रॉस साउथ एशिया। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। This is Ash Winnie on Leica Gold. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com।
1: श्री राम मंदिर किंग स्ट्रीट साउथ हॉल इनवाइट यू टू द श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी के पावन सानिध्य में 30 अगस्त रविवार को 26वीं शोभा यात्रा सुबह 11:30 बजे से श्री राम मंदिर से आरंभ होगी, जिसमें पूजन, दर्शन, भजन, कीर्तन और प्रीति भोजन। इसके अतिरिक्त 4 सितम्बर को शाम 8 बजे से भव्य सेलिब्रेशन एट द श्री राम टेम्पल 22 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल। आप आइए और सबको लाइए।

0: ओशन ऑफ द डे ये है Like a gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 130.01 इंडियन रुपी, 378.86 पाकिस्तानी रुपी, 448.34 श्रीलंकन रुपी, 167.84 बांग्लादेशी टाका, 89.76 अफगान अफगानी, 1.36 यूएस डॉलर्स, 176.64 केनियन शिलिंग, 63.61 मॉरिशियन रुपी.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £109.49 per gram.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. तो 8:51 होने आ रहे हैं. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी. इस आवर के आखिरी गीत की तरफ हम चल रहे हैं. उसके पहले मैंने आपसे पूछा था कि घर घर की कहानी में कि कौन है जो ये याद दिलाता है कि हम केवल एक ही चीज़ लेने आए थे या इक्का दुक्का चीज़ लेने हम यहाँ पे आए हैं, एंड कौन है जो एक्चुअली बिलिंग काउंटर के पास जाके जल्दी खड़ा हो जाता है. सो अकॉर्डिंग टू अ स्टडी हैज़ रिवील्ड दैट मेन एक्चुअली स्पेंड मोर टाइम शॉपिंग. मेरा भी अनुभव यही है. आपका अनुभव क्या है? जी हाँ, एक्चुअली इन सारे मुद्दों पे स्टडीज़ की जाती है और तभी मैं कुछ ना कुछ आप लोगों से सवाल पूछती हूँ. तो उसके पीछे रीज़न यही होता है जानने के लिए कि उस स्टडी में आप कहाँ फिट होते हैं. तो हो जाते हैं, सब लोग फिट होते हैं. सबने अपनी अपनी कहानियाँ मुझे सुनाई. एंड इस आवर का आखिरी गीत आशा भोसले की आवाज़ में तीसरी कसम से आय हाय मस्ती भरा गीत है. इंजॉय करिए.
0: Midlands, Manchester. This is the Leica Radio Network. This is Ash Winnie on Leica Gold.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
5: डैड, व्हाट्स रॉन्ग बेटा?
6: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
5: I will run down to the money exchange now.
6: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
5: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
6: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
7: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance with the legendary Anup Chopra.
8: जाम चलने लगे, दिल मचलने लगे.
7: On Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 PM. Show starts 6 PM. Hosted by Anisa Nasir. तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए जहां गजल्स मिलती है बॉलीवुड से. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners, Leica Radio Network.
9: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
10: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान। देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
11: साफो ट्रैवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
12: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 02071321458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
13: द इवनिंग शो विद अश्विनी,
14: Radio 90s, Leica Radio Punjabi, Leica Gold 2, now available on the Leica Radio mobile app and Alexa.

0: Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
1: आज रात लंदन में थंडरी शॉवर्स हैं, हल्की फुल्की हवा, 17 डिग्री टेम्परेचर, कल मैक्सिमम 26, मिनिमम 18, थंडरी शॉवर्स मैनचेस्टर में। आज रात हल्की फुल्की बादल, हल्की फुल्की हवा, 14 डिग्री टेम्परेचर, कल मैक्सिमम 23, मिनिमम 15, थंडरी शॉवर्स।
0: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
1: ओहो जी क्या बात, थर्ड एंड द आखिरी आवर ऑफ टेरिफिक ट्यूसडे मना रहे हैं आप और हम। शाम 7 से 10 बजे तक दो बैक टू बैक गीत बढ़िया से हैं, वॉल्यूम अप रखना है रख सकते हैं। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी।
0: लाइक अ गोल्ड, लेट्स रिटर्न टू द बिगेस्ट हिट्स बैक टू बैक, स्पॉन्सर्ड बाय travelhubworld.com। फॉर द बेस्ट सर्विस एंड अनबीटेबल प्राइसेस विजिट travelhubworld.com। travelhubworld.com,
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता।
3: ट्रेवल हब
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: लाइक अ द इवनिंग शो विद अश्विनी।

0: वेलकम, दिस इज द थर्ड एंड द आखिरी आवर ऑफ टेरिफिक ट्यूसडे। इस आवर का आगाज हमने फूल और कांटे इस फिल्म के गीत से किया, एंड दैट वाज हमारी श्रद्धांजलि है कुकू कोहली जी के लिए, इसलिए हमने ये गीत उनके लिए प्ले किया, उनकी याद में प्ले किया, वी लॉस्ट हिम टुडे। एंड साथ में सेकेंड गीत हमने लिया था कयामत से कयामत तक, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़ में। 9:13 और इस आवाज़ में गज़ल या कव्वाली मैं क्या सुनाने वाली, आपका क्या अंदाज़ है, ज़रा फटाफट मुझे लिख के भेजिए। एंड इसके बाद हम आपको SBI रेट सुनाएंगे, उसके बाद है अनोखी अदा फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में, बड़ा ही फैंटास्टिक ट्रैक।
1: Ashwini, brightening up your weeknights. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 129 इंडियन रुपीस एंड 40 पैसे। And don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages, and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

0: किशोर कुमार की आवाज में अनोखी अदा फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत। 25th of August किसी का बर्थडे होगा, किसी की एनिवर्सरी होगी और आज के दिन बहुत सारी और भी चीजें मनाई जाती हैं, जैसे नेशनल बनाना स्प्लिट डे, साथ में नेशनल विस्की सावर डे, नेशनल सेकेंड हैंड वार्डरोब डे। अब इस डे को लेकर थोड़ा मुझे उत्सुकता ही लगे कि सेकेंड हैंड कपड़ों को लेकर हर किसी का एक टेक अलग होता है। वेल, नेशनल सेकेंड हैंड वार्डरोब डे सेलिब्रेट्स सस्टेनेबल फैशन एंड माइंडफुल कंजम्पशन। दिस डे एनकरेजेस पीपल टू एक्सप्लोर सेकेंड हैंड शॉपिंग, हेल्पिंग टू रिड्यूस वेस्ट एंड गिव न्यू लाइफ टू प्री लव्ड क्लोदिंग। बिल्कुल, अभी क्लोदिंग जो हमारे पास में इतनी वेराइटी ऑफ कपड़े होते हैं, उसे डिस्पोज ऑफ करे तो करे कैसे, हर 3 महीने में फैशन चेंज होती है एंड फिर ऑब्वियसली जमाने के साथ चलने में बहुत सारे कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन डिस्पोज ऑफ इसको लेके भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो इसलिए नेशनल सेकेंड हैंड डे ये जो है इसे भी याद दिलाने के लिए ये दिन बनाया गया है। आर्टिस्ट ऑफ द वीक में चित्रगुप्त जी के कंपोजिशन में जो गीत बने हैं उनको आप सुना रहे हैं, उन्हें आप हम सुना रहे हैं। गंगा की लहरों से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में सुना रही हूं आपको अगला गीत।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: From the first time they lose a
3: baby tooth, look, Mom.
2: To the countless times they forget to mention their
4: ingredients for food tech tomorrow.
2: To the last time you hear that school was
5: yeah, right.
2: Kids grow up fast. Luckily at Tesco we have back to school uniform that grows with them, including everything they need like trousers and skirts with adjustable hems and waists. So you can focus less on the cost and more on all this. Tesco, every little helps. Available in the majority of larger stores and online.
1: This is Ash Winnie on Like a Gold.
6: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
7: Dubai is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
8: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
9: Dubai is the place. 11, 11.
8: Call the Danu Properties London office today on 02 03 963

0: ये है लाइक अ गोल्ड 10:35 AM।
1: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM to 1 PM ऑन लाइक अ गोल्ड रेडियो, लाइक अ रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइक अ रेडियो मिडलैंड्स पर।
2: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: This is Ash Winnie on Like a Gold.
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट travelhubworld.com.
0: One performer,
4: countless personalities,
0: a whole universe of entertainment.
4: Sunil Grover, live UK tour 2026.
0: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
4: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabhi to brand new surprises.
0: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
0: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Sounding better than ever in the sunshine. This is Leica Gold.

0: emergency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 129.97 इंडियन रुपी, 378.95 पाकिस्तानी रुपी, 448.48 श्रीलंकन रुपी, 167.9 बांग्लादेशी टाका, 90.01 अफगान अफगानी, 1.36 यूएस डॉलर्स, 176.68 कैनियन शिलिंग, 63.67 मॉरिशियन रुपी.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Gold. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £109.49 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com. Or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए आखिरी बार जरा टाइम मिलाते हैं. दिस इज द लास्ट एंड द आखिरी आवर ऑफ टेरिफिक ट्यूसडे. गोल्ड नाइट्स हमारी ओवरनाइट सर्विस है, जरूर सुनते रहिएगा. लाइका रेडियो 90s, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड 2. गजल या कव्वाली मैं क्या सुनाने वाली, तो आज मैं सुनाने वाली हूँ गजल आशा भोसले की आवाज़ में, उमराव जान से. दिल चीज़ क्या है, बहुत ही बेहतरीन. आई जस्ट लव दिस गज़ल. एंड आखिरी ट्रैक ऑफ दिस आवर होगा सुरेश वाडकर एंड लता मंगेशकर की आवाज़ में, प्रेम रोग से भवरे ने खिलाया फूल. हमेशा की तरह भाई बहुत बहुत मज़ा आया आप सबके साथ में. सायोनारा इसीलिए तो मैंने सुनाया, कल फिर आऊँगी सायोनारा. सो कल, ओए ये तो मेरा फेवरेट डे भाई, दो दिन इधर एंड दो दिन उधर. कल हम मनाएंगे फील गुड वेंसडे साथ में. एंड धीरे धीरे सप्ताह के अंत तक हम पहुंच जाते हैं. मैंने कहा था ना आपको कि ट्यूसडे, मिड ट्यूसडे के बाद में ना दिन बहुत जल्दी निकल जाते हैं. सो अपने आप का बहुत ख्याल रखिएगा. हमेशा की तरह जो मैं कहती हूँ कि प्यार जो है बहुत ही खूबसूरत एहसास है. एंड अलग अलग रिश्तों में हम प्यार को महसूस करते हैं. सो हमने आपको आज के शो में थियरी सुनाई, सवाल जवाब हुआ, इंटरेक्शन हुआ, मेलोडियस ट्रैक्स हुए. एंड प्यार दो प्यार लो, तो हमारे प्यार देने का तरीका ये मेलोडियस ट्रैक्स एंड एंटरटेनिंग शो आप सबके लिए है. एंड आप सबका प्यार, जब मैसेजेस आप लोगों की तरफ से आते रहते हैं, जो फीडबैक आता है, दैट इज़ योर प्यार. भाई एज आई सेड, इतना खूबसूरत एहसास है उसको वैसे ही रहने देते हैं ना. पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए. एंड आई एम श्योर आप में से कोई भी अपने पावर का यूज़ नहीं करते होंगे. बड़े प्यारे इंसान हैं सबके सब आप लोग. एंड लाइफ सुंदर है, प्लीज़ उसे कॉम्प्लिकेटेड ना करें. आपके मस्तिष्क में और आपके जहन में, आपके दिल में जो भी चीज़ें हैं बोल के दिखाएं, बिकॉज पीपल के नॉट रीड योर माइंड एंड मन. कम्युनिकेट करें, खुल्लम खुल्ला बताई दें, बहुत ज़रूरी है. एंड ऑन दीज नोट्स आई हैव टू से आई सी यू ऑल टुमारो. फिर मस्ती मजा करेंगे, तब तक टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव यू ऑल, हियर आई से बाय बाय.
0: दिस इज लाइक अ गोल्ड.
2: This superhit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
0: Ghazal.

0: Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
2: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
3: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स your travel mantra?
4: Dad,
5: what's wrong, beta?
4: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
5: I will run down to the money exchange now.
4: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
5: Oi, bale bale, I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
6: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
7: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
8: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
9: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
8: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
9: गारंटेड
8: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
9: फोन 02085748410।
8: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
10: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your मीटिंग।
11: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।

0: सरप्लस अब है स्टॉक लॉस।
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
2: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। Like a Radio और Like a Gold आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@likearadio.com।
3: कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: अरे अरे मैं भी हो गई लाल।
1: साधु साधु।
0: फिर रात हुई, एक बात हुई, चोरी चोरी चोरी मुलाकात हुई।
2: फिर
0: फुर फुर फुर फुर। बताओ नी बड़ी क्या बात हुई।
3: कह दो
0: कह दो कह दो
3: कह दो।

0: पराई।
1: रघुकुल रीत चला चती चल, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचाना ना जाई,
2: जाई जाई
1: बन चले।

0: cold nights. Hit tracks non-stop throughout the night.
1: September महीना माँ हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रहे छे।
2: तमे बता पुरुष हो तो लगने लगने कुवारा हो छो।
3: ए तमे स्त्री अमने ऐसे रहे पुरुष हो नाम खोटा होगो वालो बंद करो।
1: Comedy King निमेशा अने Queen of Comedy मल्लिका शाह लेने आवी रहे छे। Super hit गुजराती नाटक हालो पटेल भाई नी जान माँ। हवे Risley, Pottersbar, Ilford, South London अने Luton माँ। Tickets अने वधु माहिती माटे आज ज कॉल करो मंजू ने on 07931534270। नाटक नु नाम याद रखो
4: पटेल भाई जानमा।
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल at all protected.
6: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
7: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
8: Dubai is the place. 11, 11.
7: Call the Danu Properties London office today on 02 03 963

0: लाइका गोल्ड।
1: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
2: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
4: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
3: डेजर्ट सफारी,
4: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
3: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
4: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
1: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
5: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
6: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
7: Dubai is the place.
6: 11, 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
8: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
9: Classic Nagme. Aapke apne Laika Gold par.